0: हैदराबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: पाए सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।

0: तो 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: सुप्रभात, नमस्कार। आप
3: अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
2: बिल्कुल, एग्जैक्टली।
3: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उन पे कभी अवेयर नहीं होते, उन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी। हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
2: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
3: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर आप अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
3: टाइम तो होना ही चाहिए।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें। उसमें आप सूक्ष्म आयाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
2: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
3: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
2: ठीक है,
3: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है। हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
3: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है,
2: प्लीज,
3: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है, वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
2: वायु मुद्रा,
3: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
2: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
3: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
2: ओके,
3: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
2: जी,
3: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
2: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
3: मेडिटेशन तो है ही भाई, आपको स्ट्रेस से दूर करने
2: कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं है स्थिरता के साथ।
3: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
2: ओके,
3: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
2: ओके,
3: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं।
2: क्या बात,
3: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
2: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
3: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में, जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं, वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम।
2: अरे वाह,
3: योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
2: क्या बात है,
3: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ, ये देखा हुआ है सभी के प्रति, मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे बड़े अच्छे होने लगे।
2: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन है और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना इट्स नॉट इजी है ना। हर किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है, जब वो सक्सेसफुल होता है। आज आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
3: देखिए मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं।
2: अरे वाह, क्या नाम है सर?
3: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
2: अरे वाह, क्या बात है।
3: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक हैं वो।
2: अरे वाह,
3: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
2: Lovely.
3: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कम्प्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
2: नवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
3: सुबह योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा
2: बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती है?
3: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
2: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम।
3: हाँ जी,
2: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू गाइस, एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: सूर्य हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना

0: 2% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: भारतीयों का आभार व्यक्त किया है श्री मोदी ने, उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायु सेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश, नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 22 सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: TNC अप्लाई।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और आज मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, एक बार फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हम बताते हैं उन कहानियों को जिनमें स्वाद भी है, संस्कार भी है और स्वरोजगार का विस्तार भी है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है? मेरी प्यारी दोस्त आरजे ईशी। हेलो ईशी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो।
1: आपकी अपनी आरजे ईशी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं पूर्वांचल की उस धरती पे जहाँ मिठास सिर्फ चीनी में नहीं परंपरा में घुली है। जी हाँ, आज की कहानी अम्बेडकर नगर।
0: यहाँ की गलियों में सुबह की शुरुआत होती है बालूशाही और देसी घी की खुशबू से, और शाम ढलती है चाट की चटपटी महक, और मेलों में खजला वे लाल गन्ने की गोटी की मिठास लोगों को जोड़ती है।
1: बालूशाही का नाम लेते ही मन में एक तस्वीर आती है, बाहर से कुरकुरी अंदर से नरम चाशनी में डूबी हुई।
0: बालूशाही उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। खास के इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगलानी रसोई से प्रेरित मिठाई है, बादुशाह या बदुशाह से मिलता जुलता है। अम्बेडकर नगर की बालूशाही की खासियत है कि देसी घी में धीमी आंच पर तलना, मुख्य सामग्री जैसे मैदा, घी, मोयन के लिए दही, बेकिंग सोडा और हल्की फुलावट के लिए इलायची और गाढ़ा चीनी का चाशनी।
1: और इसका टेक्सचर कैसे बनता है?
0: घोल को ज्यादा नहीं गूंधा जाता, हल्के हाथों से मोड़ कर गोल आकार दिया जाता है ताकि तलने पर अंदर से परत बने। धीमी आंच पर तलकर गुनगुनी चाशनी में डुबोया जाता है। यही तकनीकी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम बनाती है।
1: विवाह, तिलक, दीपावली, होली हर शुभ अवसर की शान।
0: जी हाँ, यही अतिथि सत्कार और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से इसकी विधि मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं।
2: एक जनपद एक व्यंजन जो सरकार की नई पहल है, इसके अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर में बालूशाही और चाट का चयन किया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के ग्रामीण बाजारों में, हाटों में, चौराहों पे बालूशाही बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत बड़े स्तर पे बिक्री होती है इसकी। साथ ही जनपदवासी चाट का भी बहुत लुत्फ उठाते हैं और चाट को भी बहुत पसंद करते हैं। अंबेडकर नगर का खजला गोविंद साहब के मेले में बहुत ही पसंद किया जाता है और मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसी प्रकार से बुनिया भी अतिष्ठानों और अलग अलग अवसरों पे बनाया जाता है जनपद में। बालूशाही और चाट और इस तरह के जितने भी ये व्यंजन है, और इस पहल से ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि छोटे उद्यमियों को हम बढ़ावा दे पाएंगे और जनपद में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये अनोखी पहल उत्तर प्रदेश को निश्चय ही पूरे देश में और विश्व में एक अलग पहचान।
3: अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही है, और अग्रारी मिष्ठान भंडार की बहुत फेमस बालूशाही है। अगल बगल के 10-15 किलोमीटर के एरिया में, क्या और ज्यादा दूर तक, मतलब समझ लीजिए पूरे जिले में बहुत फेमस बालूशाही है, बहुत अच्छी बालूशाही है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है। अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही बहुत स्वादिष्ट बालूशाही है।
4: सरकार एक व्यापारियों के लिए एक स्कीम लेकर के आई है, एक जनपद एक व्यंजन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: भाजपा सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी योजना है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा ही, साथ ही अंबेडकर नगर जनपद की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो उससे हर तरह से बहुत फायदा सभी लोगों को, पूरे जनपद को मिलेगा। और इसके लिए भाजपा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद को इतनी अच्छी योजना दी है, जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा और हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
5: चाट यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप सब आइए और खाइए। यहाँ पर एकदम साफ सुथरे से चाट बनता है और यहाँ की क्वालिटीज जो है बहुत बढ़िया है। बस आप लोग यहाँ पर आइए, आनंद नगर चौराहा किसने चाट भंडार।
6: चाट जो है भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनता है, और दूसरी बात चटपटा इसमें उतना ही रहता है जितना आदमी अच्छे से मजे लेके खा सकता है। तो हम तो बोलेंगे कि आप एक बार आइए और जरूर ट्राई कीजिए, यहाँ का सबसे फेमस है।
7: हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चाट खाने आते हैं और यहाँ पे इनका चाट मशहूर है आनंद नगर में। ये इनका चाट यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए मशहूर है।
1: अब चलते हैं शाम के बाजार में जहाँ तवे पे सिकते हैं आलू टिक्की की आवाज आ रही है।
0: अम्बेडकर नगर की चाट जनपद की सामाजिक संस्कृति का सा है। मुख्य सामग्री है आलू की टिक्की, उबले मटर या चना, दही, इमली की मीठी चटनी, हरा धनिया, पुदीना की चटनी, चाट मसाला, सेव और धनिया।
1: इतिहासकार बताते हैं कि चाट की शुरुआत उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान मानी जाती है, जहाँ मसालों का संतुलन स्वाद और पाचन दोनों के लिए किया जाता है।
0: यहाँ की खासियत है स्थानीय मसाले मिश्रण दुकानदार परिवार पीढ़ियों से मसालों का संतुलन सीखते आए हैं। मेले, रामलीला, ईद, सामाजिक आयोजन, हर घर हर जगह चाट की धूम मची रहती है।
1: अब बात करते हैं खजला के, जो विशेष रूप से गोविंद साहब मेले में प्रसिद्ध है।
0: खजला मैदा, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाने वाला परतदार और कुरकुरा व्यंजन है। इसे कई परत में बोलकर, मरोड़ कर और धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए लोग इसे मेले से घर लेकर जाते हैं।
1: पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ये व्यंजन धार्मिक आस्था और स्वाद का संगम है।
0: अब चलते हैं खेतों की ओर, जहां लाल गन्ने की फसल लहरा रही है।
1: लाल गन्ने के गोटे ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। विधि है मैदा और चावल के आटे में मोइन डालकर कड़क गूंदना, लोई बनाकर छड़ जैसा आकार देना, धीमी पर तलना, गुड़ की गाढ़ी चाशनी में डुबोना, लकड़ी के बर्तनों में फैलाकर सुखाना और ठंडा होने पर गुड़ की सफेद या भूरे रंग की परत जम जाना, यही है इसकी पहचान।
0: यह उत्पाद अयोध्या, सुल्तानपुर, बसंती, आजमगढ़ तक लोकप्रिय है। फसल उत्सव और ग्रामीण मेलों में इसका विशेष महत्व होता है।
1: अब बात करते हैं रोजगार।
0: जनपद में लगभग 105 से अधिक इकाई, 400 प्रत्यक्ष, 500 अप्रत्यक्ष रोजगार, 55 से अधिक विमम निर्माण इकाई, 50 से अधिक स्ट्रीट वेंडर और स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। भट्टी ब्लॉक को एक उत्पाद के तहत इन व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है।
1: ये सब सुनकर लगता है कि अम्बेडकर नगर का स्वाद अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये तो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है।
0: बिल्कुल, और इसके बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार, दूरसंचार की सोच और लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC योजना, सरकार का उद्देश्य आप है स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
1: लेकिन RJ सरकार सिर्फ योजना बनाती है, ये जमीन पर भी मदद पहुंचा रही है।
0: अरे अब तो सरकार सीधा कारीगरों और छोटे उद्योग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सोचिए, जो हलवाई कभी सिर्फ मेले तक सीमित था, आज उसकी मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर होकर दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह घर में खचला बनाते थे, आज उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: वाह, यानी परंपरा प्रोफेशन बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार द्वारा उद्यमी को मिल रही है कई सुविधाएं, खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगने पर अनुदान और सब्सिडी, मुद्रा योजना और बैंक ऋण के माध्यम से आसान वित्तीय सहायता, जिला उद्योग केंद्र में निशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग, फूड सेफ्टी और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को उद्यम को विशेष प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पहचान,
1: यानी अब चाट की ठेली से लेके मिठाई की दुकान तक हर हाथ को मिल रहा है सरकार का साथ।
0: सही कहा आपने RJ जी, सरकार की कोशिश है कि अम्बेडकर नगर की हर पारंपरिक स्वाद को सिर्फ स्थानीय पहचान ना रहे बल्कि ब्रांड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने।
1: और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहां परंपरा भी बचे, रोजगार भी बढ़े और युवा अपने जिले में ही भविष्य तलाशे।
0: बिल्कुल, आज का यह हुनर सिर्फ तवे और कढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत बनता जा रहा है।
1: यानी सरकार स्वाद को बना रही है ब्रांड और परंपरा को दे रही है मार्केट।
0: कुछ चुनौतियां भी हैं, आधुनिक मशीनरी और अभाव गुणवत्ता की असंगति, स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां, लेकिन सरकार प्रशिक्षण और जागरूकता इन चुनौतियों को अवसर में बदल रही है।
1: तो श्रोताओं, अम्बेडकर नगर की ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और विकास की कहानी है।
0: जब देसी घी की खुशबू, चाट की चटकार, खजले की कुरकुराहट और गन्ने की रोटी की मिठास सब मिलते हैं, तब बनता है विकास का स्वाद।
8: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
9: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जहाँ परंपरा भी है,
1: प्रगति भी है
0: और हर थाली में आत्मनिर्भरता की मिठास भी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी। आज हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के खाने पीने की चीजों के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, और मेरे साथ थी आरजे शिका। और तो शिका, आप चले?
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आप रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय
1: बाय।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: कह दूं तुम्हें
9: हाँ
8: या चुप रहूं
9: ना,
8: दिल में मेरे आज क्या है
9: क्या है।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपके शहर का सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।

0: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
1: जी जी प्लीज।
0: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से। फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से। उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
1: क्या बात है।
0: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या।
1: जी
0: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
1: हाँ जी।
0: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
1: हाँ जी।
0: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
1: Alright.
0: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। तो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
1: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है।
0: जब बेबी डिलीवर होता है एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
1: जी जी।
0: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी जी।
0: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
1: जी जी जी।
0: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके। सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक।
0: Sort of, it's a different thing.
1: All right.
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है,
1: okay,
0: जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है। बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, तो
1: जी जी।
0: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवरली इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं, हाँ जी,
0: उनको नहीं पता
1: नहीं
0: होता
1: पता
0: है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है 4 मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके।
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिसे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डाइपर तो वेट नहीं है। कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है,
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो, 1.25 किलो, इस टाइप के वजन है जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा। श्योर, और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप एक क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत, हाँ जी, किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे, बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
4: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपका संडे बिल्कुल फ्रेश, हैप्पी एंड फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब हो। जी हाँ, पॉजिटिव वाइब्स हो एंड बाहर टेम्परेचर जरूर हाई है, लेकिन अपने एनर्जी का लेवल उससे भी ज्यादा हाई रखिए, क्योंकि जिंदगी मौसम से नहीं, मुस्कुराहट से खूबसूरत बनती है। आज का पॉजिटिव थॉट्स दिल को छू लेने वाला है। एवरीवन, पाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभाल कर रखना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, प्यार हो, या फिर कोई अच्छा इंसान। और दोस्तों, संडे की सुबह खुशी आपके साथ है। संडे मॉर्निंग मसाला शो, संडे मॉर्निंग मस्ती शो लेकर हाजिर है एंड बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती हम करने वाले हैं आज शो में। क्या कुछ स्पेशल है, बने रहिए, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। संडे की सुबह फुल ऑन एनर्जी के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे मालूम है आपकी भी एनर्जी हाई है, लेकिन कुछ श्रोता अभी आराम करके उठे हैं कि आज संडे है, आराम से उठेंगे। एवरी डे तो जल्दी जल्दी भाग दौड़ होती है रोज, है ना। कुछ मतलब एक ऐसा दिन होता है जब हम अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, खुद को टाइम दे पाते हैं। और हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे भी हैं जो घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं कि आज संडे है, चलो कपड़े ही वॉश कर लेते हैं, जो पूरा वीक हो गया अभी तक नहीं धुले हैं वो आज धो रहे हैं फाइनली। बहुत सारे काम हैं जो आज बाकी हैं, जिनको कम्प्लीट कर रहे हैं आप। चलिए, अच्छी बात है, अपने काम को भी कीजिएगा और थोड़ा खुद से भी प्यार कीजिए, थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालिएगा। वैसे खुशी यहाँ पर आपके लिए कुछ अमेजिंग ट्रैक भी लेकर आई है और जो आपकी सुबह को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी जो लेकर आती है ढेर सारी खुशियां आप सभी के लिए, आपकी मॉर्निंग को बनाने के लिए ब्यूटीफुल। एंड एक बहुत ही प्यारा ट्रैक आज की सुबह मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है आप सभी के लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा। वैसे दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस शो में कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए और एक बड़ा ही सोना सा गाना आज की सुबह दिलजीत दोसांझ की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ में। मैंने कहा संडे है और संडे में कुछ एनर्जेटिक सॉन्ग तो होने ही चाहिए ना। लाइक संडे को हम फीका फीका नहीं जाने देंगे, आप टेंशन ना लो। लेकिन हाँ, अपने संदेशों को आपको जरूर पहुंचाना है। आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं राइट नाउ। हाँ, नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगेन, 9837896896। और आज क्या कुछ स्पेशल है, कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्या कुछ खास है, धीरे धीरे सब आपको पता लगेगा। लेकिन पहले कुछ और शानदार से गीत जो आपकी मॉर्निंग को बनाएंगे और भी ज्यादा हैपनिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन,
1: टू दिलजीत दोसांझ।
2: या हो, बड़ा

0: सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और संडे की सुबह है, वक्त हुआ है 10:26, लेकिन बाहर इतनी गर्मी है ना कि क्या ही बोलूं मैं। हाँ, बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है ना श्रोताओं, ऐसा हो रहा है ना दोस्तों, लेकिन काम के लिए जाना भी पड़ता है बाहर। और दोस्तों आज तारीख है 14 जून की, और आज के दिन क्या स्पेशल है, कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्या कुछ खास है, सब आपको मैं बताऊंगी यहाँ पर। दोस्तों हर त्योहार अपने साथ एक खूबसूरत संदेश लेकर आता है और आज बात करते हैं हम उड़ीसा के एक बेहद अनोखे और दिलचस्प त्योहार की। जी हाँ, राजा पर्व उड़ीसा में आज सेलिब्रेट किया जाता है। राजा पर्व जिसे मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है, उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध कृषि उत्सव है। ये हर साल जून के मध्य में मनाया जाता है और 3 दिन तक चलता है। इस पर्व में धरती माँ को एक जीवंत शक्तिशाली शक्ति मानकर उन्हें विश्राम दिया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों धरती माता माँ रजस्वला होती हैं, इसलिए खेत में जुताई बुआई या खुदाई जैसे कृषि कार्य नहीं किए जाते। ये प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का सुंदर संदेश देता है। इस त्योहार की सबसे खास बात यह है कि महिलाओं और बेटियों को घर के कामों से आराम दिया जाता है। वे नए कपड़े पहनती हैं, पैरों में आलता रंग लगाती हैं और झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और पूरे उत्सव के साथ इस पर्व का आनंद लेते हैं। राजा पर्व पर पोड़ा पीठा जैसे स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जिनकी खुशबू पूरे घरों को महका देती है। तो अगर आपके आसपास कोई उड़ीसा से जुड़ा परिवार है तो उन्हें हमारी ओर से राजा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये पर्व सबके जीवन में खुशियां, हरियाली, अच्छी बारिश और समृद्धि लेकर आए।

और दोस्तों और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। मैंने आपसे कहा कि आप भी मुझे संदेश यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, उसके लिए आपको हमें मैसेज करना होगा और मैसेज करने के लिए हमें आपको नंबर बताना होगा। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे संदेश भी आ गए हैं, तो मैं उनको शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है, हाय वेरी गुड मॉर्निंग मैम, रामपुर से शमा का मैसेज आया है और गुड मॉर्निंग विश करती हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी शमा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का, और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं कि कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, परेशानियां तो बहुत हैं, कुछ वक्त पर टाल दो। वाओ, अमेजिंग लाइन है ना दोस्तों। देखिए जिंदगी है और लाइफ में प्रॉब्लम अगर नहीं आएंगी तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा ना। तो मुझे लगता है कि परेशानियां अगर हमारी लाइफ में आती है ना तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, और अगर लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन अपना है और कौन पराया है। तो कठिनाइयों से परेशानियों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उनका सामना करना है और परेशानियों से सीखकर आगे बढ़ना है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू जी का मैसेज हमारे पास आया है और गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, आप बताइएगा कैसे हैं। और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं आजाद नगर करूला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी, साथ में इनके फ्रेंड भी हैं शाद अंसारी जी। और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है, इसको भी हम प्ले करेंगे। दोस्तों आप मुझे बताइए कि संडे की सुबह है, आप क्या कर रहे हैं? सारे घर की फिनिश करके काम आराम से बैठे हो, रेडियो सुन रहे हो? देखो दोस्तों अगर आप अकेले बैठे हैं ना तो सोच लीजिए, समझ लो आप अकेले नहीं हो क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है? और अब मुस्कुरा दो क्योंकि संडे की सुबह है, खुशी आपके साथ है। और जब खुशी आती है ना, खुशी चाहती है कि आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब आप सब मुस्कुराते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। ओके अब प्यारी सी स्माइल कर दीजिए। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मैडम जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमारे पास आया है रहमत नगर छपर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं इरशाद अंसारी जी, शारिक अली जी, महराज अंसारी जी। ओके ये कह रहे हैं कि हम सोच रहे थे आनंद जी आएंगे आज शो में, सर आज आनंद जी नहीं आए, उनका तो ऑफ है। एक्चुअली अगर मुझे कहीं अर्जेंटली कुछ काम होता है तो ही आनंद सर आते हैं, वरना खुशी ही आती है क्योंकि मेरा आज का दिन होता है और मैं इसे स्किप नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आप सबसे कनेक्ट होकर हमें बहुत अच्छा लगता है, आई एम सो हैप्पी। चलिए अभी बहुत सारी बातें कर ली खुशी ने, अभी एक प्यारा सा ट्रैक सुनवाती है, उसके बाद कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें और भी जानकारियां आपको देंगे। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 22 सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
4: TNC अप्लाई।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट। जी हाँ, संडे मॉर्निंग मस्ती। संडे का दिन होता है मस्ती का भी होता है, काम का भी होता है, रिलैक्स करने का भी होता है और घूमने का भी होता है। अपनों के साथ टाइम बिताने का दिन भी होता है, टाइम स्पेंड करने का दिन होता है। और दोस्तों, आज 14 जून की तारीख है एंड आज 14 जून की जो तारीख है ना दोस्तों, एक तारीख नहीं है बल्कि किसी की धड़कन बचाने का दिन भी है। आज 14 जून पूरी दुनिया में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी अस्पताल में कोई माँ अपने बच्चे के लिए, कोई बेटा अपना अपने पिता के लिए, या कोई घायल व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के लिए सिर्फ एक यूनिट खून का इंतज़ार कर रहा हो और उसी समय आपका दिया हुआ रक्त उसकी सांसें लौटा दे, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। साथियों, रक्तदान महादान, क्योंकि आपके शरीर में कुछ ही महीनों में नया रक्त बन जाता है, लेकिन आपका दिया हुआ वही रक्त किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों दान बहुत से होते हैं, लेकिन रक्तदान ऐसा दान है जिसका फल सीधा किसी की धड़कन में सुनाई देता है। आज मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगी। अगर आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, आपका वजन 50 किलो या उससे अधिक है और आप स्वस्थ हैं, तो समय समय पर स्वेच्छा से रक्तदान जरूर करें। कई लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सही तरीके से रक्तदान करना सुरक्षित होता है और शरीर कुछ समय में इसकी भरपाई कर देता है। साथियों, आपके सिर्फ 15 मिनट का समय किसी को पूरी जिंदगी दे सकता है, तो आज इस विश्व रक्तदान दिवस पर एक संकल्प लें, जब भी अवसर मिलेगा हम रक्तदान करेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा रक्त किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है। दोस्तों, खून का रंग सबका एक होता है, इंसानियत की पहचान भी एक होती है और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रक्तदान करें और किसी की मुस्कान की वजह बने। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और जहां भी मौका मिले इंसानियत का हाथ जरूर बढ़ाइए। और अभी यहां पर बहुत प्यारे प्यारे संदेश भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल करती हूं। हमारे पास यहां पर मैसेज आया है, प्रिया आरजी जी को हमारा आदाब, आपको भी आदाब। ये मैसेज पहुंचाते हैं धनौरी तिलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया यान बाबू, और कहते हैं कि आप किसी भी गीत में मैम हमें शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, मैडम जी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उमा शंकर जी, रुद्रपुर दी भूमि उत्तराखंड से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ। राधिका का मैसेज आया है मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर नवीन नगर मुरादाबाद से, आया है ललिता कश्यप जी का और ये कहती हैं, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग मस्ती में हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपके बोलने का जो अंदाज है बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि आपका शो सुन रहे हैं, साथ में नाश्ता भी कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, कीजिए नाश्ता गर्मा गर्म। हाँ जी, हमारी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके परिवार में भी सब अच्छे ही होंगे। चलिए
चलिए दोस्तों अभी कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं और मैं लौट कर आऊंगी। आज एक बहुत ही खूबसूरत सी अभिनेत्री का बर्थडे है एंड कौन है वो मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाए हैं, स्पेशली ममा के माँ के किरदार बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने निभाए हैं। बताएंगे हम आपको कौन सी वो ब्यूटीफुल अभिनेत्री हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। अभी लौट कर आऊंगी तो बताऊंगी, बस आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो की सुई को मत घुमाइएगा। और हाँ, गाने बहुत प्यारे प्यारे प्ले कर रही हूँ मैं, इनको जरा गुनगुनाइए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और शो चल रहा है संडे मॉर्निंग मस्ती। जी हाँ, संडे का खूबसूरत सा दिन अपने आप में बहुत स्पेशल होता है। जो वर्किंग होते हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि एवरी डे वो बिजी होते हैं, काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन एक संडे होता है जब वो आराम करते हैं। लेकिन किसी किसी के लिए तो संडे आराम नहीं, मुश्किल वाला बन जाता है, बहुत बिजी हो जाता है, क्योंकि जो पेंडिंग काम होते हैं जो हम एवरी डे में नहीं कर पाते हैं वो संडे में करते हैं। लाइक जैसे घर की साफ सफाई करना, कपड़े वॉश करना, और कुछ संडे में सेलिब्रेट करते हैं, घूमने जाते हैं अपनों के साथ, पहले ही प्लान कर लेते हैं कि आज हम संडे को कहाँ घूमने जाने वाले हैं। मैं अपने वीकेंड की बात करूं तो मेरा सैटरडे बहुत बिजी गया, लाइक इतने सारे काम पेंडिंग थे जो मैंने कंप्लीट किए हैं। और कब सुबह से लेकर लाइक शाम हो गई पता ही नहीं चला, मतलब इतने सारे काम मैंने किए घर पे कल, और मतलब पूरा सैटरडे ऐसे ही बीत गया, मैं घर से बाहर भी नहीं गई। और एक दिन मिलता है उसमें क्या क्या इंसान कर सकता है यार, है ना। लेकिन अगर आपको टाइम मिला है ना तो आप उस

टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपने लिए समय निकालिए। अगर घूमने का मन है तो घूमने भी जा सकते हैं आप, लेकिन हाँ अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। देखिए अभी मौसम बहुत ज़्यादा यू नो गर्मी है, और गर्मी में मैं आपसे यही कहूँगी कि पानी पीते रहिए, नींबू पानी, शिकंजी एंड नारियल पानी, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली गर्मियों में। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि आज बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री का बर्थडे है, कौन है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आज 14 जून का दिन भारतीय सिनेमा की एक दमदार, सशक्त और बहुमुखी अभिनेत्री किरण खेर जी का जन्मदिन है, उनको ढेर सारी हमारी ओर से शुभकामनाएं। किरण खेर जी का जन्म 14 जून 1952 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। रंगमंच पर अपनी शानदार अदाकारी के बाद उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि ऐसे कलाकार के रूप में है जो हर घर में, जी हाँ, हर किरदार में जान डाल देती हैं, चाहे एक सख्त माँ का रोल हो, भावुक महिला का हो या फिर कॉमेडी का। किरण खेर जी ने हर भूमिका को यादगार बनाया है। उन्होंने देवदास में मैं हूं ना, वीर जारा, दोस्ताना, खूबसूरत, ओम शांति ओम जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में शानदार अभिनय किया। इसके अलावा वे टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो इंडिया गोट टैलेंट में जज के रूप में भी दर्शकों की पसंदीदा रही हैं। किरण खेर जी सिर्फ एक अभिनेत्री तक ही सीमित नहीं रही हैं, वे सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय रही हैं और अपने आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संघर्ष से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी हैं। कठिन स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के बाद भी उन्होंने जिस हिम्मत से वापसी की, वह सचमुच एवरीवन प्रेरणादायक है। और दोस्तों जिंदगी में उम्र नहीं हौसला मायने रखता है, और किरण खेर जी जीती जागती, जी हाँ, मिसाल हैं। और हमारी ओर से, पूरी एफएम की टीम की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से किरण खेर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जन्मदिन पर बस हम यही दुआएं करते हैं कि आपकी मुस्कान हमेशा यूं ही बरकरार रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी शानदार अदाकारी से लोगों के दिलों को यूं ही छूती रहें। हैप्पी बर्थडे किरण खेर जी। दोस्तों हर इंसान की जिंदगी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। किरण खेर जी हमें सिखाती हैं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला जिंदा है तो मंजिल दूर नहीं होती। और चलिए उन्हीं की फिल्म का एक खूबसूरत ट्रैक सुनते हैं जो उन पर फिल्माया गया है, फिर लौट कर आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें। आप भी मुझे अपने संदेश पहुंचाइएगा, एक सवाल भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन कुछ गीतों के बाद। अभी कुछ म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चुका है। आप कहीं मत जाइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ गानों के इस पार, एंड कुछ संदेश भी आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बिहार से, और कहते हैं मैम हम आपको सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका कार्यक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सलमान जी का मैसेज हमारे पास आया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, शुक्रिया, आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है।
और सैनिक प्यारी से ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है। लड़की बड़ी अनजानी है, कुमार सानू साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी आवाज। इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। तब तक आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराती रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर वक्त हुआ है 11:21 और अभी आपने जो ये ट्रैक एंजॉय किया है फ्रॉम द मूवी देवदास से, जो फिल्माया गया था किरण खेर जी पर, और आज इन्हीं का

और दोस्तों यहाँ पर खूबसूरत टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम और इंतजार कराएं अपने श्रोताओं को, क्योंकि सभी सब्र से इंतजार करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं तमन्ना का, एंड ये न्यू मुरादाबाद से मैसेज पहुंचाती हैं। कहते हैं, हाय मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। कहती हैं, मैम मेरा संडे भी ऐसे ही जाता है, घर के इतने सारे कामों में मैं व्यस्त हो जाती हूँ कि कहीं बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और जब घर के इतने सारे काम होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो फिर उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। और जब थोड़ा बहुत समय मिलता भी है तो फिर दिल करता है कि चलिए अब रेस्ट किया जाए। हाँ ये भी है, बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपशिका का, और ये कहती हैं, खुशी जी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही अच्छी थी, एंड आज आपने उड़ीसा के भी फेस्टिवल की बात की जो राजा पर्व वहाँ पर मनाया जाता है। दीपशिका कहती हैं कि मैम वो ये जो राजा फेस्टिवल होता है तीज की तरह ही मनाया जाता है, जैसे हरियाली तीज हमारे यहाँ पर मनाई जाती है। हाथों में मेहंदी लगती है, नए वस्त्र पहनती हैं, एंड झूला झूलती हैं जैसे हमारे यहाँ पर, और पूजा अर्चना आराधना होती है। अरे वाह, लगता है उड़ीसा के बारे में आप भी बहुत कुछ जानती हैं। हाँ, इन्होंने लिखा है कि एक्चुअली हमारी रिलेशन वाले उड़ीसा में रहते हैं, तो मुझे इसके विषय में जानकारी है। अरे वाह, थैंक यू दीपशिका, आपने मुझे बताया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कुलदीप जी का, और ये मैसेज पहुंचाते हैं कांट रोड मुरादाबाद से। कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आज एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एक ट्रैक हमें सुनवा दीजिएगा। पंजाबी गाने की रिक्वेस्ट सरनी की है, हम सुनवाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय माता दी, राधे राधे खुशी जी, राधे राधे आपको भी। एंड कहते हैं, हार्ट टचिंग प्रेजेंटेशंस, एंड एक से बढ़कर एक लाजवाब सॉन्ग सिलेक्शंस आपके होते हैं, और एंजॉय द ब्यूटीफुल प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना जी हैं, कांट रोड लदावली से ये अपना मैसेज पहुंचाते हैं।

मुझे हमारे पास आसिफ का आया है. हेलो गुड मॉर्निंग, आई लाइक योर प्रोग्राम एफएम मुरादाबाद 89.6. थैंक यू सो मच. नाउ आई लिसनिंग योर प्रोग्राम विद माय फैमिली. थैंक यू सो मच सर. चलिए दोस्तों, अभी कुछ अमेजिंग ट्रैक यहाँ पर हम सुनते हैं, उसके बाद आपसे करेंगे और भी बातें. आपसे मैंने मालूम किया है, आप मुझे बताइए आज आपका क्या प्लान है, क्या स्पेशल कर रहे हैं संडे में आप? हाँ, कहीं जाने का प्लान है या घर के कामों में व्यस्त हैं? चलिए कुछ खूबसूरत गीत आपके लिए, एंजॉय कीजिएगा. मैं लौट कर आती हूँ. बस बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है ये.

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है,
2: जल्दी कीजिए। विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आपका वेलकम है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और देखिए, नाना तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन इन नैनों में जब आप काजल लगाते हैं तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं आपकी आंखें.

दोस्तों अभी समय हुआ है 11:37 और साथियों क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बातों का नाम है और जब मैदान खूबसूरत हो तो यादें और भी खूबसूरत बन जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले वनडे मैच के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मैच खत्म हुआ लेकिन असली सरप्राइज तब शुरू हुआ जब रात के आसमान में सैकड़ों ड्रोन ने उड़ान भरकर भगवान शिव और मां पार्वती की मनमोहक आकृतियां बनाई। पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया और हर किसी की नजरें बस आसमान पर टिकी हुई थी। पहाड़ों की गोद में बसे धर्मशाला स्टेडियम की खूबसूरती तो दुनिया पहले से ही जानती है लेकिन इस ड्रोन शो ने उस खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। ये सिर्फ एक विजुअल शो नहीं था बल्कि हमारी संस्कृति तकनीकी और भारतीय रचनात्मक का शानदार संगम भी था। साथियों यही तो है नया भारत जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलती है और हर आयोजन को यादगार बना देता है। और दोस्तों अगर आपने ये नज़ारा अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ पल सिर्फ देखे नहीं जाते हैं उन्हें महसूस भी किया जाता है। और ऐसे ही खूबसूरत किस्सों के साथ जुड़े रहिए। मैं आपकी अपनी आरजी खुशी और आपके यहाँ पर कुछ और खूबसूरत मैसेज आए हैं मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस समय एफएम मुरादाबाद के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं, शो का आनंद ले रहे हैं, प्यारे प्यारे गाने सुन रहे हैं और जानकारियां भी इनको मिल रही है। थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। हेलो मैम गुड मॉर्निंग। बबली अंजान जी का मैसेज हमारे पास आया साथ में गीता कश्यप जी हैं और ये कहते हैं कि मैसेज करने की कोई वजह नहीं कुछ खास लोग होते हैं जिनकी आवाज सुनकर ही सुकून मिल जाता है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है दुर्गेश सैनी जी का ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं जय श्री राम आपको भी। और ये मैसेज हमें मिला है ग्राम कल्याणपुर मुरादाबाद से कहते हैं आज संडे की छुट्टी में काफ़ी दिनों के बाद आज हम गंगा जी में नहा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। अरे वाह बहुत बढ़िया। दोस्तों के साथ तो जितना टाइम स्पेंड किया जाए उतना ही कम लगता है। पता है दोस्तों जब हम दोस्तों के साथ होते हैं ना तो वक्त का पता नहीं चलता है कैसे कंप्लीट हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस ये पल यहीं ठहर जाए। जब अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ हम लोग होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और चलिए अभी कुछ खूबसूरत गीतों का आनंद लेते हैं उसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट होंगे। आप कहीं मत जाइए यूं ही मुस्कुराते रहिए अपने संदेश हमें पहुंचाते रहिए। देखिए संडे का दिन बहुत प्यारा सा होता है। ये दिन अपनों के साथ वक्त बिताने का होता है अपनों के लिए होता है और अपने लिए भी होता है। तो आज आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं अच्छी बात है। कुछ जो आपका मन है आप इंजॉय कीजिए लाइक कहीं घूमने का मन है तो घूमने जाइए अपने के साथ बैठिए। अगर कुछ आपको कुकिंग अच्छा आता है कुछ स्पेशल बनाना आता है तो सबको बनाकर खिलाओ ये मौका बार बार नहीं मिलता है।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
4: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: टीएनसी अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने ब्यूटीफुल ट्रैक सुना, तेरे बिन दिल नहीं लगता। और दोस्तों, इस गर्मी में तो बस एक ही बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, पानी के बिना दिल नहीं लगता। सच में इस मौसम में पानी, नींबू पानी, सिकंजी, छाछ या नारियल पानी जैसी चीज़ें शरीर को तरोताज़ा रखती हैं। इसलिए काम कितना भी हो, खुद को हाइड्रेट रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो आपकी समर्स में जो ठंडी ड्रिंक्स हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, आप उनका लुत्फ़ उठाइए, बनाइए घर में, खुद भी पीजिए और फैमिली मेम्बर्स को भी पिलाइए। जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी पिलाइएगा।

और दोस्तों देखिए गर्मी का मौसम है और गर्मी में ना आपको मैं बताती हूँ कि सौंफ खाने के फ़ायदे, जी हाँ कुछ शानदार सौंफ खाने के फ़ायदे मैं आपको बताने वाली हूँ। शरीर देखिए सौंफ खाने से शरीर को ठंडक मिलती है, जी हाँ सौंफ की तासीर जो होती है वो ठंडी मानी जाती है, जिससे शरीर को गर्मी से राहत मिलती है एंड पाचन बेहतर बनाती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खाने से गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं में भी आराम मिल सकता है एंड हाइड्रेशन में मदद करती है। सौंफ का पानी पीने से गर्मी में शरीर को तरोताज़ा महसूस हो सकता है अगर आप उसका पानी का सेवन सौंफ के पानी का सेवन करते हैं तो। सौंफ का पानी गर्मी से भी आपको काफी राहत देता है। और आंखों के लिए भी काफी लाभदायक है सौंफ, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। दोस्तों विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत सौंफ में फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ताजगी का एहसास देता है। गर्मी में सौंफ का शरबत या सौंफ वाला पानी पीने से शरीर को ठंडक और ताजगी महसूस होती है, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें इस गर्मी में। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है बबली अंजान जी का, कहते हैं कि आपने जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के बारे में जानकारी दी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, हम आपसे मिलेंगे सी यू सून 3 से 5 नई बातों के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ प्यारे गीतों के साथ भी। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी सेहत का खास कर ख्याल रखिएगा, ठीक है? थोड़ी सी भी लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब हमेशा यूं ही स्वस्थ रहें, खुश रहें। और जब आप सब खुश होते हैं तो खुशी और ज्यादा खुश हो जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मैं मिलूंगी आपको 3 से 5। आज का शो दोपहर का बहुत स्पेशल होने वाला है, क्या कुछ खास है उसके लिए आपको बने रहना है, सुनते रहना है अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग, पानी पीते रहिएगा, ठीक है? और गर्मी में घर से बाहर नहीं जाइएगा बेवजह।

0: अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब

0: आपके रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मोरादाबाद।
1: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: TNC अप्लाई।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो, आज जी भर के हमसे मोहब्बत कर लो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रीना। सेहत से लाभ कई के श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज बहुत खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं? इस सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में सेहत की बात पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद आरजी रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब आपके साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए आर्जेरीना, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। अब आप सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और ये समझें कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
0: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल के दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ स्ट्रेंथ विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्ट्रेंथ विद साइंस, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लेते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है ये घरेलू नुस्खा अपना लो, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट स्वास्थ्य दिल्ली के सौजन्य से चलाए जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाएं और लोगों की जेबों पर से स्वास्थ्य का खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरत के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत ही जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा हो, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं। कई बार छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं गए। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
2: भाभी, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जांच, इलाज और बाद की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें।
2: आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन कौन सी है?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस बात पर ध्यान नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
2: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जब मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
2: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीवी जैसी बीमारियां भारत में बहुत ज्यादा हैं। और जीवन शैली की बीमारियां तो 60% मौत का कारण बन रही हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सुधार हुआ है, लेकिन हर राज्य में समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
2: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जहाँ मुफ्त जाँच होती है, टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, रक्त शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
2: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे अहम भूमिका होती है, हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, जहां HO होते हैं, जहां रोज मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त जाता है, बहुत सी दवाइयाँ मिल जाती हैं और बहुत सी जांच हो जाती हैं। इसके बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और जांच की सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा होगा, तभी वो समय पर इलाज करा पाएंगे।
2: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे सच पाए?
1: आरजे रीना, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है, सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होती है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र। यही वो जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहां ANM, आशा कार्यकर्ता और कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयां देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर करते हैं। इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएंगी।
2: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की?
1: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगहों पर अभी भी डॉक्टर की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती, यहाँ जांच की सुविधाएं सीमित नहीं होती, लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता और वे बिना कोशिश किए ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन भरोसा करने की जरूरत है।
2: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुविधा कर रही है, थोड़ा

0: इसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
1: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, वो भी बड़े अस्पताल में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है जिसे दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाहें भी मिलती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो इस आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
0: आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
1: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UWIN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगना है।
0: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
1: हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार ये अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे जमाने में तो टीका नहीं लगाया फिर भी हम ठीक हैं। इसलिए आज के बच्चों को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
0: तो इन बातों का सच क्या है?
1: सच ये है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो सकता है लेकिन वह सामान्य है और ये दिखाता है कि शरीर अंदर मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था। हाँ, या हमें सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें ये ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले ही बचाव कर सकें।
0: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
1: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच न माने, पहले पूछें, समझें और फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति ही समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है।
0: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है अपने लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं और सबसे जरूरी है सही जानकारी पर ही भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं।
0: दोस्तों, आज की बात से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं तो सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जाँच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत से लाभ गई और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनना न भूले FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
6: 22 सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
5: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: TNC अप्लाई।

0: स्वागत है दोस्तों साथियों आपका, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, आज तो मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत थक गया हूँ, और ये मैं सच में आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल स्वागत करते हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पसंदीदा सेहत सही लाभ कहीं, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। सच कहूँ तो आज आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी स्टूडियो में बैठा हूँ एसी चलाकर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूँ। सुबह जब से घर से निकला हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे आज दिन थोड़ा ठीक नहीं गया मेरा, लेकिन जैसे तैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि भैया आज हालत तो खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर की एकदम घड़ी सर पर खड़ी है। तो दोस्तों, पहले सिर्फ मौसम गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
1: अरे आरजे आनंद, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी तो है, पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वकाई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है? सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
1: अरे आरजी आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ अजय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी, अब ये बताइए कि ये लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती हैं। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिएंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ओआरएस भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ओआरएस क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ओआरएस बहुत मदद करता है।
0: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
1: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ओआरएस बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ओआरएस का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, गर्मी में पानी के साथ ओआरएस दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: हाँ ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना।

0: न खाए। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा ले जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं, बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
1: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
0: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करे कि सुबह जल्दी काम शुरू करे और दोपहर की तेज धूप में आराम करे। बीच बीच में पानी पीते रहे और जहाँ भी हवा मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करे। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं, तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
0: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
0: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे, ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
1: भाभी, एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
0: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए, जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
0: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे, तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
1: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
0: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
1: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
0: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
1: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
0: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छाँव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। इलेक्ट्रॉन का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं। स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
5: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और आज मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, एक बार फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: यहाँ हम बताते हैं उन कहानियों को जिनमें स्वाद भी है, संस्कार भी है और स्वरोजगार का विस्तार भी है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है? मेरी प्यारी दोस्त आरजे ईशी। हेलो ईशी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो।
1: मैं हूँ आपकी अपनी आरजे ईशी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं पूर्वांचल की उस धरती पे जहाँ मिठास सिर्फ चीनी में नहीं परंपरा में घुली है। जी हाँ, आज की कहानी अम्बेडकर नगर।
0: यहाँ की गलियों में सुबह की शुरुआत होती है बालूशाही और देसी घी की खुशबू से, और शाम ढलती है चाट की चटपटी महक, और मेलों में खजला वे लाल गन्ने की गोटी की मिठास लोगों को जोड़ती है।
1: बालूशाही का नाम लेते ही मन में एक तस्वीर आती है, बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम चाशनी में डूबी हुई।
0: बालूशाही उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। खास करके इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगलानी रसोई से प्रेरित मिठाई है, बादुशाह या बदुशाह से मिलता जुलता है। अम्बेडकर नगर की बालूशाही की खासियत है कि देसी घी में धीमी आंच पर तलना, मुख्य सामग्री जैसे मैदा, घी, मोयन के लिए दही, बेकिंग सोडा और हल्की फुलावट के लिए इलायची और गाढ़ा चीनी का चाशनी।
1: और इसका टेक्सचर कैसे बनता है?
0: घोल को ज्यादा नहीं गूंधा जाता, हल्के हाथों से मोड़कर गोल आकार दिया जाता है ताकि तलने पर अंदर से परत बने। धीमी आंच पर तलकर गुनगुनी चाशनी में डुबोया जाता है। यही तकनीकी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम बनाती है।
1: विवाह, तिलक, दीपावली, होली हर शुभ अवसर की शान।
0: जी हाँ, यही अतिथि सत्कार और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से इसकी विधि मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं।
2: एक जनपद एक व्यंजन जो सरकार की नई पहल है, इसके अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर में बालूशाही और चाट का चयन किया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के ग्रामीण बाजारों में, हाटों में, चौराहों पे बालूशाही बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत बड़े स्तर पे बिक्री होती है इसकी। साथ ही जनपदवासी चाट का भी बहुत लुत्फ उठाते हैं और चाट को भी बहुत पसंद करते हैं। अंबेडकर नगर का खजला गोविंद साहब के मेले में बहुत ही पसंद किया जाता है और मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसी प्रकार से बुनिया भी अतिष्ठानों और अलग अलग अवसरों पे बनाया जाता है जनपद में। बालूशाही और चाट और इस तरह के जितने भी ये व्यंजन हैं, और इस पहल से ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि छोटे उद्यमियों को हम बढ़ावा दे पाएंगे और जनपद में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये अनोखी पहल उत्तर प्रदेश को निश्चय ही पूरे देश में और विश्व में एक अलग पहचान।
3: अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही है, और अग्रारी मिष्ठान भंडार की बहुत फेमस बालूशाही है। अगल बगल के 10-15 किलोमीटर के एरिए में, क्या और ज्यादा दूर तक, मतलब समझ लीजिए पूरे जिले में बहुत फेमस बालूशाही है, बहुत अच्छी बालूशाही है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही, बहुत स्वादिष्ट बालूशाही है।
4: सरकार एक व्यापारियों के लिए एक स्कीम लेकर के आई है, ये एक जनपद एक व्यंजन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: भाजपा सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी योजना है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा ही, साथ ही अम्बेडकर नगर जनपद की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो उससे हर तरह से बहुत फायदा सभी लोगों को, पूरे जनपद को मिलेगा। और इसके लिए भाजपा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद को इतनी अच्छी योजना दी है, जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा और हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
5: चाट यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप सब आइए और खाइए, यहाँ पर एकदम साफ सुथरे से चाट बनता है और यहाँ की क्वालिटीज जो है बहुत बढ़िया है। बस आप लोग यहाँ पर आइए आनंद नगर चौराहा किसने चाट भंडार।
6: चाट जो है भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनता है, और दूसरी बात चटपटा इसमें उतना ही रहता है जितना आदमी अच्छे से मजे लेके खा सकता है। तो हम तो बोलेंगे कि आप एक बार आइए और जरूर ट्राई कीजिए, यहाँ का सबसे फेमस है।
7: हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चाट खाने आते हैं और यहाँ पे इनका चाट मशहूर है आनंद नगर में। ये इनका चाट यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए मशहूर है।
1: अब चलते हैं शाम के बाजार में जहाँ तवे पे सिकती है आलू टिक्की की आवाज आ रही है।
0: अम्बेडकर नगर की चाट जनपद की सामाजिक संस्कृति का हिस्सा है। मुख्य सामग्री है आलू की टिक्की, उबले मटर या चना, दही, इमली की मीठी चटनी, हरा धनिया, पुदीना की चटनी, चाट मसाला, सेव और धनिया।
1: इतिहासकार बताते हैं कि चाट की शुरुआत उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान मानी जाती है, जहाँ मसालों का संतुलन स्वाद और पाचन दोनों के लिए किया जाता है।
0: यहाँ की खासियत है स्थानीय मसाले मिश्रण, दुकानदार परिवार पीढ़ियों से मसालों का संतुलन सीखते आए हैं। मेले, रामलीला, ईद, सामाजिक आयोजन, हर घर हर जगह चाट की धूम मची रहती है।
1: अब बात करते हैं खजला के, जो विशेष रूप से गोविंद साहब मेले में प्रसिद्ध है।
0: खजला मैदा, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाने वाला परतदार और कुरकुरा व्यंजन है। इसे कई परत में बोलकर, मरोड़कर और धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए लोग इसे मेले से घर लेकर जाते हैं।
1: पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ये व्यंजन धार्मिक आस्था और स्वाद का संगम है।
0: अब चलते हैं खेतों की ओर, जहां लाल गन्ने की फसल लहरा रही है।
1: लाल गन्ने की गोटी ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। विधि है मैदा और चावल के आटे में मोइन डालकर कड़ा गूंदना, लोई बनाकर छड़ जैसा आकार देना, धीमी पर तलना, गुड़ की गाढ़ी चाशनी में डुबोना, लकड़ी के बर्तनों में फैलाकर सुखाना और ठंडा होने पर गुड़ की सफेद या भूरे रंग की परत जम जाना, यही है इसकी पहचान।
0: यह उत्पाद अयोध्या, सुल्तानपुर, बसंती, आजमगढ़ तक लोकप्रिय है। फसल उत्सव और ग्रामीण मेलों में इसका विशेष महत्व होता है।
1: अब बात करते हैं रोजगार।
0: जनपद में लगभग 105 से अधिक इकाई, 400 प्रत्यक्ष, 500 अप्रत्यक्ष रोजगार, 55 से अधिक विमम निर्माण इकाई, 50 से अधिक स्ट्रीट वेंडर और स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। भट्टी ब्लॉक को एक उत्पाद के तहत इन व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है।
1: ये सब सुनकर लगता है कि अम्बेडकर नगर का स्वाद अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये तो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है।
0: बिल्कुल, और इसके बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार, दूरसंचार की सोच और लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC योजना। सरकार का उद्देश्य साफ है, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
1: लेकिन RJ सरकार सिर्फ योजना बनाती है, ये जमीन पर भी मदद पहुंचा रही है।
0: अरे अब तो सरकार सीधा कारीगरों और छोटे उद्योगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सोचिए, जो हलवाई कभी सिर्फ मेले तक सीमित था, आज उसकी मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर होकर दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह घर में खचला बनाते थे, आज उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: वाह, यानी परंपरा प्रोफेशन बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार द्वारा उद्यमी को मिल रही है कई सुविधाएं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगने पर अनुदान और सब्सिडी, मुद्रा योजना और बैंक ऋण के माध्यम से आसान वित्तीय सहायता, जिला उद्योग केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग, फूड सेफ्टी और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को उद्यम को विशेष प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पहचान।
1: यानी अब चाट के ठेले से लेके मिठाई की दुकान तक हर हाथ को मिल रहा है सरकार का साथ।
0: सही कहा आपने RJ जी, सरकार की कोशिश है कि अम्बेडकर नगर की हर पारंपरिक स्वाद को सिर्फ स्थानीय पहचान न रहे बल्कि ब्रांड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने।
1: और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहां परंपरा भी बचे, रोजगार भी बढ़े और युवा अपने जिले में ही भविष्य तलाशे।
0: बिल्कुल, आज का यह हुनर सिर्फ तवे और कढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत बनता जा रहा है।
1: यानी सरकार स्वाद को बना रही है, ब्रांड और परंपरा को दे रही है मार्केट।
0: कुछ चुनौतियां भी हैं, आधुनिक मशीनरी और अभाव गुणवत्ता की असंगति, स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां, लेकिन सरकार प्रशिक्षण और जागरूकता इन चुनौतियों को अवसर में बदल रही है।
1: तो श्रोताओं, अम्बेडकर नगर की ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और विकास की कहानी है।
0: जब देसी घी की खुशबू, चाट की चटकार, खजले की कुरकुराहट और गन्ने की रोटी की मिठास सब मिलते हैं, तब बनता है विकास का स्वाद।
8: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
9: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जहाँ परंपरा भी है,
1: प्रगति भी है
0: और हर थाली में आत्मनिर्भरता की मिठास भी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी। आज हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के खाने पीने की चीजों के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, और मेरे साथ थी आरजे शिका। तो शिका आप चले?
1: जी बिल्कुल चले।
0: बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आप रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय
1: बाय।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर्नी और समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज़ सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

Alter.

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं, और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं, और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप, और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो जी। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप, और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो जी। हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ आप कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है, और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त हैं और एक और दोस्त हैं। तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नया जब हम आप लोग FM पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: हे नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना? अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना?
5: बिल्कुल।
4: तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं, आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
5: आनंद मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे
4: होगे। अच्छा हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना, हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
5: बिल्कुल,
4: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
5: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए।
4: बिल्कुल। तो आज सोच बदलू का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त, हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से, धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
5: गुनगुनाते रहिए।
4: श्रोताओं,
6: आई लव यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया, और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब
1: बहुत ज्यादा बढ़ रही है
0: जी, जो फ्रॉड के मामले रही ना वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना, वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और से किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बताया।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती हूँ,
0: सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे से सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे, तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दी 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद के मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: दोस्तों, अब देखिए, रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया, आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं, सबसे मजे की बात पता है क्या है, कि आजकल ना जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट में, इतने इनके जो तरीके हैं ना बहुत सारे बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगता है रीना, जैसे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बिल्कुल।
0: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
1: कभी बोलेंगे बैंक वाले, हाँ, बोल रहे हैं,
0: कॉल्स आ जाती हैं, और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करोगी तो पैसा
1: पैसे कट जाते हैं,
0: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है, और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
0: ये आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना, आपसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं, आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे, मैं और रीना। क्यों रीना?
1: बिल्कुल। हाँ, अरे बिल्कुल
0: दोस्तों, बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी
1: है, बहुत जरूरी है।
0: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है, उससे पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
5: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहणियां होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगी। और इसी तरह के प्रोग्राम्स हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं ताकि भैया हमारा जो समुदाय है, हमारा जो कम्युनिटी है, हमारी जो मुरादाबाद की जनता है, उसको अवेयरनेस मिले और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदले। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, क्यों रीना?
1: बिल्कुल, और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा मिले तो बेहतर है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन तो आप करिए खरीदारी, लेकिन ऑफलाइन भी करिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत जरूरी है। अपने आसपास के प्रोडक्ट को अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी।
1: लेकिन ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं उसको कम करें
0: आप ऑनलाइन पे। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक आ रही है, आपको ऑफर दिख रहा है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए श्रोताओं, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी अपनी बातों को विराम देते हैं और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे जाने की अनुमति देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं और रीना आपके साथ छोड़ के जाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है सोच बदलो, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा ये गीत, और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद, और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला है ना।
1: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
0: जी
1: है।
0: हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिये दोस्तों, याद रखिये, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बच कर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराएं। क्यों रीना?
1: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है, उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
0: पता चल सके ना बिल्कुल साथ क्या हो रहा है।
1: हाँ।
0: तो दोस्तों, आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो,
1: बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।
1: बाय गाइस।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने

0: सबसे बड़ी ताकत है।
1: तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
2: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों, पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।
1: तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है?
0: श्रोताओं, खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, ये हम सभी जानते हैं। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, लेकिन सही तैयारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदें। फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें, और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गांव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है, और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। धरती माँ हर पसीने की

कीमत जरूर चुकाती हैं। जब खेत हरे भरे होते हैं तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी। और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: 5 सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412111111।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: बात फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
3: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
4: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
6: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ, लौट कर आ गए हैं हम आपके लिए और कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार और मैं हूँ आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
1: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
0: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
1: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
0: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम है, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
0: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
2: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
3: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
3: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है।
0: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
1: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियाँ तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ।
4: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
0: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों, जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं, उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
1: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
0: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को, जो बेटियां हैं, उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
1: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था, तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे, लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे, तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
0: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
0: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चा जन्म जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
0: बिल्कुल जरूरी है और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी। बेटी है तो कल है।
0: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारे तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
0: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
1: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए। श्रोता
5: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
9: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
11: हर घर

0: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई सुबह की नई कहानी।
1: एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और आज मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। एक बार फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हम बताते हैं उन कहानियों को जिनमें स्वाद भी है, संस्कार भी है और स्वरोजगार।

0: चाशनी में डूबी हुई।
1: बालूशाही उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। खास करके इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगलानी रसोई से प्रेरित मिठाई है, बादूशाह या बदूशा से मिलता जुलता है। अम्बेडकर नगर की बालूशाही की खासियत है कि देसी घी में धीमी आंच पर तलना, मुख्य सामग्री जैसे मैदा, घी, मोइन के लिए दही, बेकिंग सोडा और हल्की फुलावट के लिए इलायची और गाढ़ा चीनी का चाशनी।
0: और इसका टेक्सचर कैसे बनता है?
1: गोल को ज्यादा नहीं गूंधा जाता, हल्के हाथों से मोड़ कर गोल आकार दिया जाता है ताकि तलने पर अंदर से परत बने। धीमी आंच पर तलकर गुनगुनी चाशनी में डुबोया जाता है। यही तकनीकी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम बनाती है।
0: विवाह, तिलक, दीपावली, होली हर शुभ अवसर की शान।
1: जी हाँ, यही अतिथि सत्कार और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से इसकी विधि मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं।
2: एक जनपद एक व्यंजन जो सरकार की नई पहल है, इसके अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर में बालूशाही और चाट का चयन किया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के ग्रामीण बाजारों में, हाटों में, चौराहों पे बालूशाही बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत बड़े स्तर पे बिक्री होती है इसकी। साथ ही जनपदवासी चाट का भी बहुत लुप्त उठाते हैं और चाट को भी बहुत पसंद करते हैं। अंबेडकर नगर का खजला गोविंद साहब के मेले में बहुत ही पसंद किया जाता है और मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसी प्रकार से बुनिया भी अतिष्ठानों और अलग अलग अवसरों पे बनाया जाता है जनपद में। बालूशाही और चाट और इस तरह के जितने भी ये व्यंजन है और इस पहल से ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि छोटे उद्यमियों को हम बढ़ावा दे पाएंगे और जनपद में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये अनोखी पहल उत्तर प्रदेश को निश्चय ही पूरे देश में और विश्व में एक अलग पहचान।
3: अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही है और अग्रारी मिष्ठान भंडार की बहुत फेमस बालूशाही है। अगल बगल के 10-15 किलोमीटर के एरिए में, क्या और ज्यादा दूर तक, मतलब समझ लीजिए पूरे जिले में बहुत फेमस बालूशाही है, बहुत अच्छी बालूशाही है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही, बहुत स्वादिष्ट बालूशाही है।
4: सरकार एक व्यापारियों के लिए एक स्कीम लेकर के आई है, एक जनपद एक व्यंजन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: भाजपा सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी योजना है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा ही, साथ ही अम्बेडकर नगर जनपद की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो उससे हर तरह से बहुत फायदा सभी लोगों को, पूरे जनपद को मिलेगा। और इसके लिए भाजपा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद को इतनी अच्छी योजना दी है जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा और हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
5: चाट यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप सब आइए और खाइए। यहाँ पर एकदम साफ सुथरे से चाट बनता है और यहाँ की क्वालिटीज जो है बहुत बढ़िया है। बस आप लोग यहाँ पर आइए, आनंद नगर चौराहा किसनी चाट भंडार।
6: चाट जो है भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनता है, और दूसरी बात चटपटा इसमें उतना ही रहता है जितना आदमी अच्छे से मजे लेके खा सकता है। तो हम तो बोलेंगे कि आप एक बार आइए और जरूर ट्राई कीजिए, यहाँ का सबसे फेमस है।
7: हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चाट खाने आते हैं और यहाँ पे इनका चाट मशहूर है आनंद नगर में। ये इनका चाट यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए मशहूर है।
0: अब चलते हैं शाम के बाजार में जहाँ तवे पे सिकते हैं आलू टिक्की की आवाज आ रही है।
1: अम्बेडकर नगर की चाट जनपद की सामाजिक संस्कृति का सा है। मुख्य सामग्री है आलू की टिक्की, उबले मटर या चना, दही, इमली की मीठी चटनी, हरा धनिया, पुदीना की चटनी, चाट मसाला, सेव और धनिया।
0: इतिहासकार बताते हैं कि चाट की शुरुआत उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान मानी जाती है, जहाँ मसालों का संतुलन स्वाद और पाचन दोनों के लिए किया जाता है।
1: यहाँ की खासियत है स्थानीय मसाले मिश्रण, दुकानदार परिवार पीढ़ियों से मसालों का संतुलन सीखते आए हैं। मेले, रामलीला, ईद, सामाजिक आयोजन, हर घर हर जगह चाट की धूम मची रहती है।
0: अब बात करते हैं खजला के, जो विशेष रूप से गोविंद साहब मेले में प्रसिद्ध है।
1: खजला मैदा, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाने वाला परतदार और कुरकुरा व्यंजन है। इसे कई परत में बोलकर, मरोड़कर और धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए लोग इसे मेले से घर लेकर जाते हैं।
0: पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ये व्यंजन धार्मिक आस्था और स्वाद का संगम है।
1: अब चलते हैं खेतों की ओर, जहां लाल गन्ने की फसल लहरा रही है।
0: लाल गन्ने की गोटी ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। विधि है मैदा और चावल के आटे में मोइन डालकर कड़क गूंदना, लोई बनाकर छड़ जैसा आकार देना, धीमी पर तलना, गुड़ की गाढ़ी चाशनी में डुबोना, लकड़ी के बर्तनों में फैलाकर सुखाना और ठंडा होने पर गुड़ की सफेद या भूरे रंग की परत जम जाना, यही है इसकी पहचान।
1: यह उत्पाद अयोध्या, सुल्तानपुर, बसंती, आजमगढ़ तक लोकप्रिय है। फसल उत्सव और ग्रामीण मेलों में इसका विशेष महत्व होता है।
0: अब बात करते हैं रोजगार।
1: जनपद में लगभग 105 से अधिक इकाई, 400 प्रत्यक्ष, 500 अप्रत्यक्ष

0: तीक्ष रोजगार 55 से अधिक, विमम निर्माण इकाई 50 से अधिक, स्ट्रीट वेंडर और स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। भट्टी ब्लॉक को एक उत्पाद के तहत इन व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है।
1: ये सब सुनकर लगता है कि अंबेडकर नगर का स्वाद अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये तो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है।
0: बिल्कुल, और इसके बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार दूरसंचार की सोच और लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन यानी ODOC योजना। सरकार का उद्देश्य साफ है, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
1: लेकिन RJ सरकार सिर्फ योजना बनाती है, ये जमीन पर भी मदद पहुंचा रही है।
0: अरे अब तो सरकार सीधा कारीगरों और छोटे उद्योगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सोचिए, जो हलवाई कभी सिर्फ मेले तक सीमित था, आज उसकी मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर होकर दूसरे शहरों तक पहुँच रही है। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह घर में खचला बनाते थे, आज उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: वाह, यानी परंपरा प्रोफेशन बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार द्वारा उद्यमी को मिल रही है कई सुविधाएं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगने पर अनुदान और सब्सिडी, मुद्रा योजना और बैंक ऋण के माध्यम से आसान वित्तीय सहायता, जिला उद्योग केंद्र में निशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग, फूड सेफ्टी और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को उद्यम को विशेष प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पहचान।
1: यानी अब चाट की ठेली से लेकर मिठाई की दुकान तक हर हाथ को मिल रहा है सरकार का साथ।
0: सही कहा आपने RJ जी, सरकार की कोशिश है कि अंबेडकर नगर की हर पारंपरिक स्वाद को सिर्फ स्थानीय पहचान न रहे बल्कि ब्रांड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने।
1: और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहां परंपरा भी बचे, रोजगार भी बढ़े और युवा अपने जिले में ही भविष्य तलाशे।
0: बिल्कुल, आज का यह हुनर सिर्फ तवे और कढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत बनता जा रहा है।
1: यानी सरकार स्वाद को बना रही है, ब्रांड और परंपरा को दे रही है मार्केट।
0: कुछ चुनौतियां भी हैं, आधुनिक मशीनरी और अभाव गुणवत्ता के असंगति स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां, लेकिन सरकार प्रशिक्षण और जागरूकता इन चुनौतियों को अवसर में बदल रही है।
1: तो श्रोताओं, अम्बेडकर नगर की ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और विकास की कहानी है।
0: जब देसी घी की खुशबू, चाट की चटकार, खजले की कुरकुराहट और गन्ने की रोटी की मिठास सब मिलते हैं, तब बनता है विकास का स्वाद।
2: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जहाँ परंपरा भी है,
1: प्रगति भी है
0: और हर थाली में आत्मनिर्भरता की मिठास भी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी। आज हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के खाने पीने की चीजों के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, और मेरे साथ थी आरजे शिका। और तो शिका, आप चले?
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आप रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, संडे अपने आप में बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत खास होता है। आज क्या कुछ स्पेशल, मैंने आपको कहा था ना दोस्तों कि आज संडे की दोपहर में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल शो में करने वाली हूँ। और आज क्या स्पेशल है वो मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, लेकिन अपना दिल थाम के बैठो। और हाँ, मुझे आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। अभी स्टूडियो क्लॉक टाइमिंग हुई है 3:27। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और शो का नाम है बिंदास बोल, जहां पर आप बिंदास होकर बातें कर सकते हैं। नो टेंशन, नो ड्रामा, क्योंकि खुशी आ गई है सबको हंसाने के लिए, यहां पर गुदगुदाने के लिए, कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। तो मेरे साथ में अभी मैम भी, बहुत ही टैलेंटेड मैम यहां पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में, तो उनसे आपको कनेक्ट करा देते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ बहुत सारा इंतजार हमने करवा दिया है, अब इंतजार नहीं करवाते हैं, तो रूबरू करवाते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मल्टी

0: टैलेंटेड मैम से, क्या नाम है उनका, मैं बताती हूँ आपको। जी हाँ, रोमा मैम से मैं आज आपको कनेक्ट कराने वाली हूँ। बहुत ही स्वीट आवाज़ है, देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है एंड स्माइल भी बहुत प्यारी है। अब उनकी मैंने इतनी सारी तारीफें की है ना, तो जनाब आप सुन भी लीजिएगा उनकी आवाज़। हेलो मैम, वेलकम है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर।
1: सभी को नमस्कार एंड थैंक यू खुशी, इतना सुंदर वेलकम मुझे देने के लिए, इतने प्यार से मुझे वेलकम करने के लिए। और मुझे आज यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम रोमा त्यागी है और मैं मुरादाबाद के सेंट मेरीज बुद्धि विहार में टीचर हूँ।
0: अरे वाह।
1: और सिंगिंग मेरा पैशन है, सिंगिंग मेरी हॉबी है, सिंगिंग मैं बहुत पसंद करती हूँ। और कोई भी अगर मैं वर्क कर रही होती हूँ, हाउस होल्ड वर्क हो या कुछ भी हो, तो वो अगर मैं सॉन्ग के साथ करती हूँ तो मेरा वर्क बहुत इजी हो जाता है।
0: हाँ एग्जैक्टली, जो जिसकी रग रग में सिंगिंग होती है ना दोस्तों, तो वो चाहे सोते हों, बैठते हों, उठते हों, काम करते हों, खाते पीते, वो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। तो आज मैडम से भी सुनने का वक्त आ गया है। मैंने कहा इतनी प्यारी सी आवाज़ मैम की, इतनी स्वीट है, और उन्होंने कहा जैसे मेरा पैशन है सिंगिंग करना, तो उनसे कुछ सुन लेते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। चलिए मैम शुरुआत करते हैं। आपका फेवरेट गाना जो आप अक्सर गुनगुनाया करती हैं, आपके दिल के बेहद करीब है, मैं चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: ओके खुशी, वैसे तो सबकी फेवरेट सिंगर लता जी ही है और जी। मेरी फेवरेट सिंगर भी लता जी ही है।
0: हाँ जी,
1: उनका एक सॉन्ग है, तो मैं ट्राई करती हूँ गाने की कि मैं गा पाती हूँ अच्छा या नहीं।
0: इतना प्यारा मैम गाती हैं, मैं तो उनकी इनकी सिंगिंग में ना एकदम बोलते हैं ना कि मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, खो गई थी मैं, फिर मैं होश में आई कि मुझे अभी लाइव जाना है। तो चलिए मैम सुनाइएगा।

0: कैसा लगा?
1: वाओ अमेजिंग, जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए, बहुत ही खूबसूरत आपने गुनगुनाया है और मैं तो बस आपका चेहरा ही निहार रही थी टुक टुक, और कानों में हेडफोन, लग रहा था कि हाँ मैं सच में लता जी को ही सुन रही हूँ। बहुत ही प्यारी स्वीट आवाज़ है मैम आपकी। वैसे मैम ये सिंगिंग का पैशन कब से, मतलब आपकी यू नो आपको लगा कि मुझे गाना चाहिए, स्टेज पर परफॉर्म करना चाहिए?
0: एक्चुअली खुशी, सिंगिंग का पैशन तो मेरा जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे तब से ही है।
1: ओके।
0: और पता नहीं ये चीज कहाँ से आती है, मेरी मुंह अपने आप खुलता है, अपने आप से सॉन्ग्स आ जाते हैं मेरी जबान पे, मैं खुद से गाती हूँ, तो सिंगिंग मुझे खुद ही अच्छी लगती है। ये भगवान की देन है,
1: गॉड गिफ्टेड है,
0: मेरे अंदर म्यूजिक डाला तो मुझे इसीलिए सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद है।
1: अच्छा, घर में जब बातें करती हैं तो गुनगुना कर बातें करती हैं या डायरेक्टली बातें करती हैं?
0: बातें करती हूँ, बस कोशिश करती हूँ ज्यादा गुनगुना लूँ।
1: अच्छा,
0: जितना गुनगुना पाऊँ उतना गुनगुनाऊँ।
1: बिल्कुल, जो अपना पैशन होता है ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसको पूरे डेडिकेशन के साथ जीते हैं ना, तो उस जिंदगी में एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही आनंद होता है।
0: नहीं बिल्कुल, ये बात तो आपने सच कही, जो चीज हम पसंद करते हैं, जिसका पैशन हमारे अंदर होता है, अगर हम वही चीज परस्यू करें, उसी में कंटिन्यू करें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है,
1: डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली मैम, और फिर हमें लगता भी है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा फील होता है, खुद को अंदर से खुशी मिलती है।
0: नहीं बिल्कुल, वाकई में ये तो आपने बिल्कुल सच कहा।
1: तो चलिए दोस्तों, अभी मैम से बहुत कुछ बाकी है सुनना, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिएगा आप। आज हम अमेजिंग मैम को लेकर आए हैं और मैम से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में भी, एंड और भी उनसे गीत सुनेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैम आप मुझे बताइए कोई गाना आप सुनना चाहती हूँ जो आपको पसंद हो।
0: सॉन्ग मुझे ज़्यादातर तो मैं लता मंगेशकर जी के सॉन्ग ही सुनती हूँ।
1: जी जी,
0: मुझे अच्छा लगता है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए।
1: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत। ये जो दिल हमारा है ना, छोटा ही भले लेकिन देखने में छोटा है, लेकिन शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, बहुत सारी फरमाइशें इसकी होती हैं। और जैसे मैम आपने कहा कि मुझे सिंगिंग का बचपन से ही पैशन है, जब से मैंने जन्म लिया है सिंगिंग ऐसा लगता है कि मेरी रगों में है स्टार्टिंग से ही। और मतलब आपने स्टेज पर भी परफॉर्म किया है, ये भी हम आगे आगे और मैम से जानेंगे कि मैम ने कहाँ कहाँ पर परफॉर्म किया है, एंड वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और वो रोज़ अपना वीडियो भी अपलोड करते हैं दोस्तों, तो आप मैम के साथ सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी आकर हम सारी जानकारी आपको देंगे, अब आप चाहते हैं कि खुशी एक बार में बता दे तो ये नामुमकिन है। अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए और एक खूबसूरत सा गीत सुनिएगा अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। करेंगे मैम से और भी बातें, बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर आप भी मैम की आवाज में कोई गाना अपने पसंद का सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइएगा। मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
1: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
0: जल्दी कीजिए
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
1: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
1: TNC अप्लाई।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, आज संडे हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ में कनेक्ट हैं रोमा मैम जी, जो बहुत अच्छी टीचर भी हैं, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, बहुत ही खूबसूरत गाती हैं। एंड मैम ऐसा गाती हैं कि उनकी आवाज़ में सब मोहित हो जाते हैं। एंड उनसे सुनेंगे अभी बहुत ही खूबसूरत गीत। लेकिन श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ये ट्रैक सुना लता मंगेशकर जी की, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़, फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर, 1978 में फिल्म आई थी। म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। और अभी रुक करते हैं रोमा मैम की साइड, उनसे सुन लेते हैं। बड़ी प्यारी सी उनकी स्माइल है एंड वो मेरी तरफ निहार रही है, मैं उनकी तरफ निहार रही हूँ। तो चलिए उनसे सुन लेते हैं कुछ और गीत खूबसूरत से, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो मैम, वंस अगेन वेलकम बैक। कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर आज?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग हो रही है, खुशी आप बहुत अच्छी आज है, मुझे आपके साथ बैठ के इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है।
0: ऐसा नहीं लग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं।
1: हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे आप बहुत ऐसी लग रही है, बिल्कुल फ्रेंडली, जिनके साथ में बहुत कंफर्टेबल हूँ।
0: थैंक यू सो मच मैम, ये तो आपका प्यार है। और अभी हम आपसे और कुछ सुनना चाहते हैं, आपके कुछ फेवरेट गीत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे आपने पहले ही इतना प्यारा सा लता जी का गाना गाया है, और अभी आप किन का ट्रैक सुनाने वाले हैं?
1: खुशी, मुझे सॉन्ग सुनने का शौक तो है ही, साथ में मुझे गजलों का बहुत शौक है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: गुलाम अली की गजल्स, मेहंदी हसन साहब की गजल्स, जगजीत सिंह की गजल,
0: हाँ,
1: तो मैं बहुत सुनती हूँ।
0: ओके,
1: सुकून मिलता है।
0: तो अगर गजलों की बात हुई है तो मैम से गजल ना सुने ऐसे तो हो ही नहीं सकता है एवरीवन। तो चलिए मैम से सुनते हैं एक प्यारी सी खूबसूरत सी गजल। जी मैम,
1: तो मैं अभी सुनाना चाहूंगी मेहंदी हसन साहब की गजल है।
0: जी,
1: उसकी कुछ लाइनें कोशिश करती हूँ गाने की।
0: श्योर मैम।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल मैम आपने गुनगुनाई है, गाई है। और मैंने मतलब गज़लें सुनी हैं, लेकिन इस तरह से इतनी शांत होकर इतना डीपली गहराई में जाना, वो मैंने अभी फर्स्ट टाइम फील किया है आपकी आवाज़ में। मोस्ट वेलकम मैम। नेक्स्ट क्या सुनाना चाहेंगे आप?
1: नेक्स्ट एक और गज़ल है, उसकी कुछ लाइनें।
0: जी जी बिल्कुल।
1: जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक,

एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार

0: अमेजिंग मैम, बहुत ही खूबसूरत. मैं तो सच में बहुत ही, ये गज़ल मुझे बहुत खूबसूरत लगी मैम, आपकी बहुत पसंद आई. और इतनी प्यारी सी आवाज़ मैम की. इतने दिनों से कहाँ थे आप, मुझे ये बताइए, पहले क्यों नहीं मिले?
1: नहीं खुशी, मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी, अब भगवान ने हमें मिला दिया.
0: हाँ जी,
1: मुझे आपकी कंपनी में बैठ के, यहाँ बैठ के गाना इतना अच्छा लग रहा है जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको.
0: सेम पंच मैम, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग से सिंगिंग का शौक रहा है और गाने सुनने का म्यूजिक से एक अलग ही लगाव है. जब मैं अक्सर अकेली होती हूँ तो मैं गाने सुनती हूँ और लाइक वो ऐसा लगता है मुझे सबसे ज़्यादा मेरा खुशी का पल वही बीतता है जब मैं अकेली अक्सर रहती हूँ और गाने सुनती हूँ. म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा मेरा भी लगाव रहा है, प्यार मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा है. अगर कहें आप मुझसे मैम पूछें ना कि आपको हम दो ऑप्शन देते हैं, पहले दोस्त, सेकंड आपको म्यूज़िक, तो आप किन को चुनेंगे? तो मैं म्यूज़िक को चुनूँगी.
1: नहीं बिल्कुल सही कहा आपने खुशी, एक्चुअली म्यूजिक जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रेस फ्री करती है.
0: जी मैम,
1: आजकल के भागदौड़ भरे टाइम में जहाँ पे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, किसी के पास भागदौड़ है, सबको जॉब पे जाना है, कहीं जाना है, तो कहीं भी अगर दो पल भी सुकून के मिले और हम उसमें म्यूजिक सुने तो वो एक बहुत अच्छा समय होता है हमारा, हमारी टेंशन हमारी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए. तो वही मैं और आप सेम हैं, आपको भी म्यूजिक अच्छा लगता है, मुझे भी म्यूजिक अच्छा लगता है.
0: बिल्कुल मैम, और जब दोनों साथ में मिल गए हैं तो चीजें और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली हैं. तो दोस्तों, जो मैम ने अभी गजल गुनगुनाई है, सादगी तो जरा
1: सादगी तो हमारी
0: जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया. वाह वाह वाह. तो चलिए दोस्तों, यही खूबसूरत सी हम गजल सुन लेते हैं, कव्वाली सुन लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं, आपसे भी करेंगे बातें. आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए. और हाँ, मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि अगर आप भी कोई मैम की आवाज़ में अपना फेवरेट गीत सुनना चाहते हैं, चाहे वो लता जी का हो, आशा जी का हो, तो आप हमें फटाफट से व्हाट्सएप कीजिएगा. नंबर है 9837896896.

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

0: हेलो हाई एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सभी का आरजे खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है आपके अपने फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और दोस्तों, मैंने कहा था ना कि आपसे हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत एंड मल्टी टैलेंटेड मैम यहां पर बैठी हैं. रोमा मैम जो बहुत प्यारी सी, उनकी स्माइल है, एक पॉजिटिव वाइब मुझे उनसे आ रही है, उनके स्माइल में भी वो झलक रही है पॉजिटिविटी. और आइए उनसे कनेक्ट करते हैं एंड सुनते हैं कुछ खूबसूरत में जो दिल को छू जाते हैं. अभी आपने सुने ही है बैक टू बैक. वैसे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का मैम की आवाज में, तो आप फटाफट से मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर है 9837896896. और अभी हम रुख करते हैं मैम की ओर. हेलो मैम, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आपकी मधुर सी आवाज में मैं तो गाना सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ.
1: थैंक यू सो मच खुशी.
0: मोस्ट वेलकम मैम. इतने प्यार से बोलोगी ना तो हम आपको जाने नहीं देंगे.
1: हर बार इतना प्यार से वेलकम देने के लिए मेरा खुद ही जाने का मन नहीं है आपको छोड़ के.
0: अरे वाह, ये तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई है. और अभी आप क्या सुनाने वाली मैम?
1: अभी मुझे श्रेया घोषाल है, उनका एक सॉन्ग याद आ रहा है. बहुत प्यारी आवाज है श्रेया घोषाल, तो उनका एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है. मैं उसी के कुछ लाइन्स गाने की कोशिश करती हूँ.
0: यस मैम.

जिंग सुपर, बहुत ही खूबसूरत ये मैम ने ट्रैक गुनगुनाया है, गाया है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था एवरीवन कि बस मैं मैम को ना रोकूं और ये गाती रहे, मैं सुनती रहूं ऐसे ही। आई होप आप सभी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे मैम की आवाज को। और दोस्तों यही खूबसूरत सा ट्रैक हम सुनते हैं फ्रॉम द मूवी सैयारा से, लौट कर आते हैं और मैम से कुछ और खूबसूरत गीत हम सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। वैसे आप भी अगर उत्सुक हैं, आपके मन में भी अगर कोई ट्रैक चल रहा है इस वक्त कि ये मैम को रोमा मैम की आवाज़ में सुनना है, तो आप ना बिल्कुल भी इस चांस को मिस मत करो, फटाफट से मुझे व्हाट्सएप करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। और एक खूबसूरत से गाना लौट कर आते हैं कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। गुड इवनिंग एवरीवन।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स. वेलकम है आप सभी का इस खूबसूरत से सफर में, और इस सफर को खूबसूरत शानदार बना रही हैं हमारे साथ रोमा मैम, जो बहुत ही ज्यादा, मैंने आपसे कहा है कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड. उनकी वॉइस, हाय रब्बा, मैं तो जब सुनती हूँ ना उनकी आवाज तो खुश आती हूँ. लगता है कि बस मैं यहीं पर हैप्पी हूँ. इतने प्यारे प्यारे मैम के नगमे, इतनी स्वीट आवाज, और आप भी सुन रहे हैं. एंड हमारे पास हमारे श्रोताओं के मैसेज भी आए हैं, लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, तो मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ. उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की है, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप भी मैम की आवाज में कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं अपना फेवरेट, जो आपको बहुत पसंद है एंड आपको लगता है कि मैम की वॉइस इतनी प्यारी है तो मुझे ये गीत सुनना चाहिए, तो आप फटाफट से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896. और हमारे पास कुछ खूबसूरत संदेश आए हैं तो उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, खुशी दीदी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार. ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं ग्राम चमोरा जिला संभल से ब्रजेश मिस्त्री जी, और साथ में इनकी फैमिली भी है. कहते हैं कि मैम, आज मैम की आवाज़ में जो हम ट्रैक सुन रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, और हम भी एक गीत सुनना चाहते हैं मुकेश जी की. मुकेश जी ने उस गाने को गाया है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, तो इस गाने की रिक्वेस्ट आई है मैम आपके लिए, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसको गुनगुनाएगा अपनी मधुर सी आवाज़ में.
1: बिल्कुल खुशी, पहले तो थैंक यू जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, मुझे इस लायक समझा. मैं मुझे दो लाइन आती है इस सॉन्ग की.
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: करती हूँ अच्छा गाने की.
0: जी मैम.
1: सजन रे झूठ मत बोल

0: अरे वाह, क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने गुनगुनाई हैं मैम। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, आपको आप भी बाहर से जब आए थे तो कितनी गर्मी थी ना मैम, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ कि इस गर्मी में हमारे दिल को चैन आ जाए, कोई ऐसा ट्रैक किशोर दा जी की आवाज़ में गुनगुनाया हुआ, गाया हुआ उनका ही सॉन्ग कुछ जो आप गुनगुनाना चाहें इस गर्मी में, जो दिल को राहत दी जाए।
1: बिल्कुल खुशी, किशोर जी तो मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं, मैं उनके बहुत सॉन्ग सुनती हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैं एक सॉन्ग उनका गाती हूँ,

फिलहाल अब तो हमें चैन मिल गया है मैम की आवाज में, ट्रैक सुनकर दिल को सुकून मिल गया है चिलचिलाती गर्मी में। तो चलिए दोस्तों, अभी ये हमने प्यारा सा ट्रैक मैम की आवाज में सुना है, अब सुनते हैं किशोर दास जी की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आते हैं हम, आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। और हाँ, आप भी मुझे बता सकते हैं कि मैम की पसंद का, मैम की आवाज में अपनी पसंद का कोई ट्रैक अगर सुनना चाहते हैं तो फटाफट से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। और वक्त हुआ है 4:13 राइट नाउ, मैम हमारे साथ रहने वाली हैं 4:30 तक। जी हाँ, 4:30 तक हमारे साथ मैम कनेक्ट रहने वाले हैं। तब तक आपके पास अभी गोल्डन चांस है, आप बिल्कुल स्किप ना करें, फटाफट से हमें रिक्वेस्ट भेजें, हम इंतजार कर रहे हैं। और ये खूबसूरत से गाना जो मैम ने अभी गुनगुनाया है, आप सब सुनिएगा।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और शो का नाम है बिंदास बोल। देखिए, जब खुशी आती है ना तो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आती है, और आज तो मुझे भी डबल खुशी मिल रही है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लेजेंड हमारी प्यारी सी मैम बैठी हैं, ब्यूटीफुल हैं एंड उनकी आवाज़ हाय मैं तो खो ही गई हूँ। और प्राची से भी मैं मालूम करती हूँ क्योंकि प्राची भी स्टूडियो में हमारे साथ बैठी हैं, वो बोल नहीं रही हैं लेकिन टुक टुक निहार रही हैं, कुछ महसूस भी कर रही हैं, जरा उनसे सुन लेते हैं। हाँ जी प्राची, कैसा लग रहा है आपको, बताइए जरा।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा संडे आज स्पेशल हो गया है।
0: हाँ, स्पेशल तो हो गया है, अब जब खुशी आती है तो संडे में कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता ही है।
1: खुशी आप लेके आए हो रोमा मैम को, उनकी सिंगिंग है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना हमें, क्योंकि मैं और खुशी हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं,
0: और आज
1: संडे मैम को सुनने के लिए मिल रहा है तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: स्पेशली मुझे भी नहीं पता था कि संडे आज मेरा इतना स्पेशल होने वाला है, एंड मैं थैंक यू कहना चाहूँगी रोमा मैम का कि रोमा मैम आ जाए, अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया उन्होंने, तो रोमा मैम से भी बातचीत कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। हाँ जी मैम, वंस अगेन वेलकम है आपका, रोमा मैम कैसे हैं आप बताइएगा।
2: खुशी मैं तो क्या बताऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं बस गाती जाऊं गाती जाऊं,
0: और हमारा मन कर रहा है हम सुनती जाए सुनती जाए,
2: बैठी रहूं और गाती जाऊं सिंगिंग करती जाऊं।
1: वाह, संडे सच बताऊं कंपनी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: हाँ,
2: मुझे आपके साथ बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपने मुझे इतना कम्फर्टेबल फील कराया है, रियली थैंक यू सो मच खुशी,
0: मोस्ट वेलकम मैम। तो मैम हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हैं आपके लिए, हमारे पास ये मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, और कहते हैं कि आप दोनों को हमारी तरफ से आदाब, संडे में आपका शो बिंदास बोल सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपके साथ मैम को भी सुन रहे हैं, मैम की आवाज़ में एक से बढ़कर एक सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं, लिसनर्स की फरमाइश पर बेहद पसंद आ रहा है हमें आपका शो, और हम भी एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मैम से कि वो भी हमारे लिए एक सॉन्ग गुनगुनाएं, गाएं, प्ले करें अपनी आवाज़ में। मैम इन्होंने हमें एक गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले।
2: जी जी जी, मैं सॉन्ग की दो लाइन गाती हूँ।
0: जी मैम बिल्कुल गुनगुनाएं।
2: थैंक यू सो मच जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, इतना सुंदर सॉन्ग मुझे गाने के लिए दिया।

0: See, amazing, wonderful, यार, so beautiful, ma'am.
1: अच्छा मैम, आप इतना अच्छा कहते हैं, आप कहाँ मिलेंगे हमें सोशल मीडिया पे?
0: हाँ मैम, हम भी आपसे यही जानने वाले थे नेक्स्ट कि अगर आपको हम सोशल मीडिया पर सुनना चाहें, लाइक सोशल मीडिया पर देखना चाहें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. मुझे पता है कि आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. सो प्लीज़, हमारे जो लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो भी आपको यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहाँ पर आपको सर्च करें, जहाँ पर आप उनको मिल जाएं.
1: जी, थैंक यू खुशी इतनी तारीफ करने के लिए.
0: मैम जो जेन्युइन है, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमारे दिल से निकल रहा है.
1: सोशल मीडिया पे मेरा यूट्यूब चैनल है, रोमा त्यागी नेम से है. वो आप सर्च करके, उसमें मैंने कुछ गाने की कोशिश की है तो वो आप सुन सकते हैं. प्लीज सुनिए, और आप सुनेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके व्यूज बढ़ेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा.
0: एग्जैक्टली मैम, एक कलाकार के लिए तो सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत मोस्ट होता है. एंड जब हमें अप्रिशिएट मिलता है तो हम और ज़्यादा आगे ग्रो करते हैं.
1: नहीं, बिल्कुल सही बात कही खुशी आपने. ये आप ही लोग हैं जिनके अप्रिसिएशन और मोटिवेशन से मैं यहाँ बैठी हूँ. तो प्लीज़ मेरे चैनल को व्यूज़ दीजिए, प्लीज़ सुनिए और मुझे मोटिवेट करिए.
0: मैम, मैंने तो आपको आपका चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया है और मैंने लाइक भी किया है आपका ट्रैक. हाई रबा, मैं वारी जावा. वैसे प्राची, आप क्या कहना चाहेंगी मैम के बारे में? कुछ जानना चाहते हो आप मैम के बारे में? मैं जानना चाहती हूँ मैं मैम से ये जानना चाहती हूँ कि मैम आप क्या खाते हैं? इतनी स्वीट आवाज़ है आपकी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ और मधुर हो जाए. सो प्लीज़ कुछ ट्रिक ऐसी बता दीजिएगा, कोई ट्रिक जिससे मेरी आवाज़ और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए.
1: खुशी, आपकी आवाज़ तो वैसे ही बहुत प्यारी है. आपकी आवाज़ रोज़ ऑडियंस सुनते होंगे, आपकी आवाज़ रियली वैसे ही खुद ही बहुत प्यारी है. अपनी बात करूं तो क्या कहूं, पता नहीं मेरी वॉइस. वैसे मेरी मदर बहुत अच्छी सिंगर है, उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो शायद ये मुझे उन्हीं से मिला है, सिंगिंग का शौक और म्यूज़िक में इंटरेस्ट और वोकल क्वालिटी शायद मुझे उन्हीं से मिली है, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत अच्छी है. मेरी बड़ी सिस्टर है, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो ये मुझे उन्हीं से मिला है ये इंटरेस्ट.
0: ओके,
2: जैसे मेरे लिए मैम, मेरे पास भी आपके लिए क्वेश्चन है.
0: हाँ.
2: कि जैसे आपने बताया कि आप एक टीचर भी हैं, तो मैम मतलब ऐसा होता है ना टीचर्स के साथ, मतलब बच्चों से, मतलब क्लास में भी ऐसा होता है कि थोड़ा मतलब वो थोड़ा लाउड होना पड़ता है, तो क्लास
0: थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है स्टूडेंट के साथ. हाँ,
2: तो तब भी एक मतलब हमारा वॉइस होता है जो मतलब एक तरह से मॉड्यूलेट हो जाते हैं एक अलग लेवल पे, और फिर सिंगिंग में भी आपकी आवाज इतनी अच्छी है, तो कैसे आप हैंडल करती हैं?
1: आपने सही क्वेश्चन पूछा. एक्चुअली मुश्किल तो होता है.

0: बट अगर हमें किसी चीज का पैशन है तो हमें साथ में लेके चलना पड़ता है.
1: Exactly.
0: तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चल पाऊँ, साथ में दोनों चीजों को मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि वर्क तो हमें करना है. वर्क हमारी सबकी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है, हमें yeah. करनी ही करनी है.
1: Yes, ma'am.
0: और हमारा पैशन जो है, जिस चीज से हमें खुशी मिलती है, हम स्ट्रेस फ्री अपने आप को फील करते हैं, तो वो भी मैं साथ के साथ कोशिश करती हूँ, जितना भी हो पाता है उतना करती हूँ. बाकी आप लोगों का प्यार, आपका मोटिवेशन.
2: नाम ने काफी अच्छे से मैनेज कर रखा है दोनों चीजों को.
1: मैं मैम से वही मालूम कर रही थी प्राची,
2: मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लाउड भी रहना है और फिर आके अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस को
1: मॉड्यूलेट करना. मैं वही बोल रही थी प्राची कि मैम आप स्टूडेंट को यू नो डांटते हैं या फिर गुनगुना कर डांटते हैं, किस तरह से आप यू नो चीज़ों को करते हैं. तो मैम भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि एक होता है ना, जब हमारे अंदर सिंगिंग का पैशन होता है, गाने का शौक होता है, तो हम हर चीज़ को गुनगुना कर एक्सप्लेन करते हैं. तो मैं मैम से वही मालूम कर रही थी कि मैम जब आप बच्चों को डांटते हैं, कभी होता है कि बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है, तो आप कैसे समझाते हैं? गुनगुना कर ही लिरिक्स ऐसे ही, मतलब लय में सुर ताल में समझाते हैं या डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं?
2: स्पेशली जब बच्चों को बार बार हमें उनको मतलब एक ही बात बार बार बतानी पड़ती है, तो मतलब कभी कभी स्ट्रिक्ट होके लाउड भी होना पड़ता है. मतलब ये भी टीचिंग का,
1: क्योंकि ये भी एक टीचर है मैम
0: जी. अच्छा,
1: इसीलिए वो इतना डीपली जा रही है सारी चीजों में.
0: नहीं, एक्चुअली अपना क्लास मैनेज करने में, बच्चों को डील करने में तो मैं एक टीचर ही हूँ.
1: ओके मैम,
0: तो ऐसे टीचर ही मैं हैंडल करती हूँ बच्चों को. बाकी जैसा मैंने कहा कि हमें हमारा पैशन जो है उसे हमें फॉलो करना है, तो उसके साइड बाय साइड में कोशिश करती हूँ कि मेरे वॉइस मेंटेन रहे
1: या
0: मेरी सिंगिंग मेंटेन रहे.
1: तो मैम हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं. कहते हैं ना कि अपनी वॉइस के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, लाइक ठंडी चीजों को अवॉइड करना पड़ता है.
0: मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैं किसी चीज का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखती.
1: ओके.
0: एक्चुअली मैं आइसक्रीम खाने की बहुत शौकीन हूँ.
1: ओके.
0: और अभी समर्स है.
1: हाँ.
0: तो मुझे ठंडा ठंडा ड्रिंक्स, फ्रिज से निकला हुआ कुछ भी, शेक्स वगैरह अच्छे लगते हैं, पीती हूँ. हाँ, ये है कभी सिंगिंग के लिए अगर प्रैक्टिस के लिए बैठे.
1: यस मैम.
0: तो कुछ ल्यूक वार्म कुछ गुनगुना पिया.
1: हाँ.
0: और या हल्का नॉर्मल वाटर पिया, तो बहुत थोड़ा. वैसे परहेज मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाती.
1: Okay.
0: क्योंकि मुझे खाना पीना बहुत पसंद है.
1: फूडी भी है मैम. फूडी भी है. मेंटेन किया हुआ है, सारी चीजों को बैलेंस किया हुआ है. तो चलिए अभी मैम कुछ गुनगुनाने वाले थे नेक्स्ट, तो लता जी की आवाज में ही
0: मैं आपको अभी अपनी चॉइस का सॉन्ग सुनाना
1: चाहती हूं. हां बिल्कुल मैम, सुनाइएगा.
0: जी हमें मंजूर है

0: अमेजिंग मैम, हम तो आज घर जाने वाले हैं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी प्राची, और मैम को आज हम यहीं पर रोक लेते हैं, ठीक है? अपनी अपनी चेयर टाइट करके बैठ जाओ।
1: टीम की वाइब्स बहुत मैच
0: हो रही है। एग्जैक्टली और मैम की आवाज में जब हम गाने सुन रहे हैं ना, तो रिटर्न आने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुनती ही जाए, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। तो अभी फिलहाल एक ये ट्रैक सुनते हैं मैम की पसंद का, और भी रिक्वेस्ट हमारे पास बैक टू बैक आ रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन शोइंग लव, इतना प्यार देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम से सुनेंगे नेक्स्ट, जो लिसनर्स की हमारी रिक्वेस्ट आई है उनको भी हम सुनेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना लता जी की आवाज़ में जो मैम ने अभी गुनगुनाया है, उसके बाद आपसे करेंगे और भी ज्यादा बातें। आप कहीं बजाएं, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए।

0: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
4: TNC अप्लाई।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 4:40। मैडम ने प्रॉमिस किया था, अभी उनकी डॉटर का कॉल आया तो डॉटर ने बोला कि मामा कब आ रहे, तो मैम ने कहा 4:30। लेकिन मैम का दिल और हमारा दिल मिल चुका है और हम मैम को जाने नहीं दे रहे, मैम का जाने का भी मन नहीं है। तो मैंने कहा मैम थोड़ा सा टाइम और दे दीजिएगा हमें। वैसे प्राची आपको कैसा लग रहा है, मैम को भेजें अभी नहीं भेजें, जाने का मेरा तो मन नहीं है इनको कहीं भी जाने देने का। मेरा मन कर रहा है कि बस यहीं बैठा के रखूं और इनसे गाने सुनते रहूं। बाकी आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है मैम के साथ आज?
1: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा भी मन कर रहा है कि हमें सेशन को थोड़ा और स्ट्रेच कर देना चाहिए ना।
0: हाँ बिल्कुल, मेरा मन तो यही है। बाकी मैम से भी मालूम कर लेते हैं उनके दिल का हाल, उनको लाइक क्या इरादा है मैम का। वैसे मैम भी मुस्कुरा रही है, मैम का इरादा भी यही है कि मैं भी नहीं जा रही हूँ। हाँ जी मैम बताइएगा।
2: खुशी एक्चुअली मन तो मेरा यही है कि मैं ना जाऊं, बट क्या करूं, बस आपने मुझे इतना बांध लिया है, इतना ज्यादा बांध लिया है कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ यहाँ से। जैसा मैंने पहले भी बोला था, मेरा मन कर रहा है मैं गाती चली जाऊँ, गाती चली जाऊँ, गाती चली जाऊँ और आप सुनते चले जाओ।
0: बिल्कुल हम सुन
2: रहे हैं, मेरी फीलिंग है।
0: बहुत ही अच्छी फीलिंग है आपकी, सेम पिंच हमारा मन है। हमारा मन गुनगुनाने का नहीं लेकिन हाँ सुनने का बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब इतनी खूबसूरत आवाज हमारे सामने साक्षात गा रही हैं, हम तो पीछे हैं। वैसे अभी मैम आप और क्या सुनाने वाली हैं?
2: मैं अभी लता जी का एक सॉन्ग गाती हूँ।
0: जी जी,
2: जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत हमें मोटिवेट करता है।
0: यस मैम।
2: जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसका

0: सुपर मैम, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया है और सीरियसली इसमें कितनी मोटिवेशन वाली लाइनें हैं ना, कितनी खूबसूरत है। ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसको गाना पड़ेगा। और सच में मैम, लाइफ में ना दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी दुख में हमें हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी सिचुएशंस प्रॉब्लम हमें आती है, हमारी लाइफ में आती है, तो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, हमें सिखाने के लिए आती है, तो हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्यों मैम?
1: बिल्कुल सही बात है, हमें आना चाहिए कि हम हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि हमारी लाइफ में हर पार्ट आता है। अगर सुख है तो फिर दुख भी है, तो हमें दोनों पार्ट्स को ही हैंडल करना आना चाहिए, ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर सुख नहीं रहता तो फिर दुख भी एक दिन नहीं रहता। तो मेरा यही मानना है कि जिंदगी खुशी से हंस के जिए, क्योंकि ये जिंदगी प्यार का गीत है।
0: एग्जैक्टली, वाओ। और प्राची, आप कुछ कह रहे थे कि मैं बहुत देर से मैम की बातें सुन रही हूँ, मैम की गाने सुन रही हूँ, तो मेरे दिल में भी कोई एक ट्रैक आया है जो मैं सुनना चाहती हूँ, तो बताइए आप अभी चुप क्यों हैं? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम।
2: हाँ, तो मैम प्लीज आप एक सॉन्ग, आप प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है कि
0: आप गुनगुनाएं
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: थैंक यू प्राची, मुझे इतना प्यारा सॉन्ग देने के लिए। मैं दो लाइन गाती हूँ इसकी।

क्या बात है यार, थैंक यू सो मच मैम. आपने इतना खूबसूरत गीत प्राची की रिक्वेस्ट पर, और मेरा भी मन था स्पेशली, आपने गुनगुनाया. बिग थैंक यू. एंड ये ट्रैक सुनते हैं दोस्तों, अभी लौट कर आते हैं वापस. बस आप यूं ही प्यार बनाए रखिए, कहीं मत जाइए, और हाँ अपना ख्याल भी रखिए, पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है. हम चाहते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो फिट एंड फाइन रहें, हेल्दी रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये शानदार सा ट्रैक, फिर आपसे और भी करेंगे गुफ्तगू. आप बस यूं ही हैप्पी रहिए.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल ऑफ लिसनर्स. वेलकम है आपका आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और संडे की ब्यूटीफुल इवनिंग है एंड मेरे साथ में रोमा मैम भी यहां पर मौजूद हैं, जो अपनी मधुर सी आवाज में सबको अपना दीवाना बना रही हैं. वैसे तो हम हो गए हैं दोनों लड़कियां दीवानी, बाकी आप भी हो गए हैं ये तो हम जानते ही हैं. और हमारे पास यहां पर और ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं एंड ये मैसेज हमें मिला है यहां पर आजाद नगर करोला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी का है. और ये कहते हैं, हेलो मैम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर आपको भी. कहते हैं कि मैम की आवाज़ बहुत ही प्यारी है और मुझे उनकी आवाज़ में एक प्यारा सा ट्रैक सुनना है, एक रिक्वेस्ट है मेरी मैम. तो सर वो मैम से ही हम जान लेते हैं कि मैम के जाने का भी वक्त हो गया है और मैम कुछ गुनगुनाना चाहती हैं. तो मैम आप क्या गुनगुनाना चाहती हैं ज़रा हमें सुना दीजिएगा, क्योंकि जाने का वक्त हो गया. जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा दोस्तों, ना ही मैम का मन है, पर क्या करें, वक्त को भी हमें ध्यान में रखना होता है. और जाते जाते मैम कोई खूबसूरत सा गीत जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप गुनगुनाना चाहती हैं, हमारे तमाम श्रोताओं को सुनाना चाहती हैं अपनी मधुर सी आवाज़ में.
1: पहले तो बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे इतना प्यारा सॉन्ग दिया था गाने के लिए. सर मैं आपकी रिक्वेस्ट का सॉन्ग नेक्स्ट टाइम ज़रूर गाऊंगी. अभी मैं एक सॉन्ग आपको सुनाना चाहूंगी.
0: अरे वाह, निकी और पूछ तो बिल्कुल सुनाइएगा मैम, हम तो सुनने के लिए बेताब हैं.
1: तो खुशी मैं स्टार्ट करती हूँ सॉन्ग. वैसे तो मेरा जाने का मन नहीं है, बट जाना है तो मैं चाहती हूँ ये एंडिंग थोड़ी यादगार रहे. ओके, तो मैं कोशिश करूँगी मेरा सॉन्ग आपको सबको अच्छा लगे. गुलाबी आँखें

0: जानू तेरी आंखों का मेरा ये कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
1: अमेजिंग, सुपर, बहुत ही प्यारा आपने गुनगुनाया है। और मैं तो कहना चाहूंगी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये चेयर आपके नाम हम कर देते हैं क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा है ना। आज का माहौल कैसा लगा प्राची, आपको बताइएगा। आज की शाम
2: आज हमारा संडे बहुत अच्छा हो गया है ना।
1: अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो गया है। मैं संडे को कभी नहीं भूल पाऊंगी।
2: हमने मैम के पीछे मधुर मधुर सॉन्ग सुने है ना, तो सच में हमें और मुझे खुशी को तो बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि हम लोग हर संडे यही करते हैं और मैम ने हमें इतनी अच्छी कंपनी दी तो बहुत अच्छा लगा।
1: बिल्कुल। और मैम आप जाते जाते तमाम श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं और जो कहीं ना कहीं गाना मतलब उनके अंदर भी सिंगिंग का पैशन है, शौक है, वो कहीं किसी ना किसी रीजन की वजह से आगे नहीं मतलब ग्रोथ कर पा रहे हैं, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
3: खुशी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आपको भी और सभी सुनने वालों को भी जिन्होंने टाइम दिया, मुझे सुना और मेरा हौसला बढ़ाया। और ये संडे एक्चुअली मेरा भी मेमोरेबल संडे है। मुझे इस संडे रियली बहुत अच्छी मेमोरीज बनी है। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली और मैं बहुत ही फ्रेंडली फील कर रही हूँ आपके साथ। मुझे इतना सा भी डिस्कम्फर्ट नहीं लगा, बहुत कंफर्टेबल रही मैं। खुशी, यू आर एक्सीलेंट, रियली यू आर एक्सीलेंट।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये तो आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है। एंड माय प्लेजर मैम।
3: और हमारी जो भी हॉबीज होती हैं तो कई बार हम पहले से वो नहीं बढ़ा पाते, बचपन से कई बार नहीं हो पाता, लेकिन जब भी हो लाइफ में, जब भी हमें मौका मिले हमें अपनी हॉबीज पे वर्क करना चाहिए। अगर हमारा कुछ पैशन है, कुछ ऊपर वाले ने हमें टैलेंट दिया है तो हमें उस पे वर्क ज़रूर करना चाहिए, वो चाहे आपकी कुछ भी एज हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की एज नहीं होती। हम अपना टैलेंट, अपने शौक कभी किसी भी एज में पूरे कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों का म्यूज़िक टैलेंट है, सिंगिंग टैलेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, पढ़ाइए, म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा भगवान का वरदान है, भगवान की देन है। एंड थैंक यू सो मच सभी ऑडियंस को एंड फिर से एक बार खुशी को।
1: थैंक यू सो मच मैम, आप भी आए एंड आपने बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज दिया कि ऊपर वाले ने अगर आपको कोई स्किल दी है, कोई टैलेंट दिया है, तो आप उसको आगे लेकर आइए, उसको आगे आप दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि जो आपके पास है वो ना जाने कितनों के पास नहीं है। और बहुत सारे श्रोता सोचते भी हैं कि काश ये चीज़ें हमें मिल पाती, तो थैंक्सफुल होना चाहिए, ईश्वर का थैंक यू करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का करना चाहिए कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया एंड उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, तभी हम काबिल बने हैं, यहाँ पर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आप शिद्दत के साथ चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। और ये बात जेन्युइन है, रियल है दोस्तों। अगर यकीन नहीं होता तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आपको खुद में खुद रिजल्ट मिल जाएगा। और अभी मैं फिलहाल आपसे जाने की अनुमति लेती हूँ, लेकिन मिलेंगे हम आपको बहुत जल्द। तब तक के लिए आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बाकी प्राची आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे तमाम श्रोता इस समय लिसनर से सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप बताइएगा?
2: मैं बस यही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और गर्मी भी बहुत है तो समय अभी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
1: एग्जैक्टली। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं जो मैम ने प्यारा सा ट्रैक आपको गुनगुनाकर सुनाया था, मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़ में गुलाबी आँखें। तो इसी ट्रैक के साथ हम आपको बाय बाय, टेक केयर कहते हैं। जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा ना, अगर जाएंगे नहीं तो रिटर्न कैसे आएंगे, इसीलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: sunny day.
1: It is a sunny day.
0: Oh, sunny shades day, yaar.
1: Yaar, sorry.
0: और फिर मिला है तुलसी?
1: कितने है ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को भी अता पता है ही नहीं यार।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: नमस्कार, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और आज मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, एक बार फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हाँ, हम बताते हैं उन कहानियों को जिनमें स्वाद भी है, संस्कार भी है और स्वरोजगार का विस्तार भी है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है? मेरी प्यारी दोस्त आरजे ईशी। हेलो ईशी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो।
1: आपकी अपनी आरजे ईशी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं पूर्वांचल की उस धरती पे जहाँ मिठास सिर्फ चीनी में नहीं परंपरा में घुली है। जी हाँ, आज की कहानी अम्बेडकर नगर।
0: यहाँ की गलियों में सुबह की शुरुआत होती है बालूशाही और देसी घी की खुशबू से, और शाम ढलती है चाट की चटपटी महक, और मेलों में खजला वे लाल गन्ने की गोटी की मिठास लोगों को जोड़ती है।
1: बालूशाही का नाम लेते ही मन में एक तस्वीर आती है, बाहर से कुरकुरी अंदर से नरम चाशनी में डूबी हुई।
0: बालूशाही उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। खास करके इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगलानी रसोई से प्रेरित मिठाई है, बादुशाह या बदुशाह से मिलता जुलता है। अम्बेडकर नगर की बालूशाही की खासियत है कि देसी घी में धीमी आंच पर तलना, मुख्य सामग्री जैसे मैदा, घी, मोयन के लिए दही, बेकिंग सोडा और हल्की फुलावट के लिए इलायची और गाढ़ा चीनी का चाशनी।
1: और इसका टेक्सचर कैसे बनता है?
0: घोल को ज्यादा नहीं गूंधा जाता, हल्के हाथों से मोड़कर गोल आकार दिया जाता है ताकि तलने पर अंदर से परत बने। धीमी आंच पर तलकर गुनगुनी चाशनी में डुबोया जाता है। यही तकनीकी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम बनाती है।
1: विवाह, तिलक, दीपावली, होली हर शुभ अवसर की शान।
0: जी हाँ, यही अतिथि सत्कार और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से इसकी विधि मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं।
2: एक जनपद एक व्यंजन जो सरकार की नई पहल है, इसके अंतर्गत जनपद अम्बेडकर नगर में बालूशाही और चाट का चयन किया गया है। जनपद अम्बेडकर नगर के ग्रामीण बाजारों में, हाटों में, चौराहों पे बालूशाही बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत बड़े स्तर पे बिक्री होती है इसकी। साथ ही जनपद वासी चाट का भी बहुत लुत्फ उठाते हैं और चाट को भी बहुत पसंद करते हैं। अम्बेडकर नगर का खजला गोविंद साहब के मेले में बहुत ही पसंद किया जाता है और मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसी प्रकार से बुनिया भी अतिष्ठानों और अलग अलग अवसरों पे बनाया जाता है जनपद में। बालूशाही और चाट और इस तरह के जितने भी ये व्यंजन हैं, और इस पहल से ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि छोटे उद्यमियों को हम बढ़ावा दे पाएंगे और जनपद में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये अनोखी पहल उत्तर प्रदेश को निश्चय ही पूरे देश में और विश्व में एक अलग पहचान।
3: अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही है, और अग्रारी मिष्ठान भंडार की बहुत फेमस बालूशाही है। अगल बगल के 10-15 किलोमीटर के एरिया में, क्या और ज्यादा दूर तक, मतलब समझ लीजिए पूरे जिले में बहुत फेमस बालूशाही है, बहुत अच्छी बालूशाही है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही, बहुत स्वादिष्ट बालूशाही है।
4: सरकार एक व्यापारियों के लिए स्कीम लेकर के आई है, एक जनपद एक व्यंजन, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: भाजपा सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी योजना है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा ही, साथ ही अम्बेडकर नगर जनपद की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो उससे हर तरह से बहुत फायदा सभी लोगों को, पूरे जनपद को मिलेगा। और इसके लिए भाजपा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद को इतनी अच्छी योजना दी है, जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा और हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
5: चाट यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप सब आइए और खाइए, यहाँ पर एकदम साफ सुथरे से चाट बनता है और यहाँ की क्वालिटीज जो है बहुत बढ़िया है। बस आप लोग यहाँ पर आइए, आनंद नगर चौराहा किसने चाट भंडार।
6: चाट जो है भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनता है, और दूसरी बात चटपटा इसमें उतना ही रहता है जितना आदमी अच्छे से मजे लेके खा सकता है। तो हम तो बोलेंगे कि आप एक बार आइए और जरूर ट्राई कीजिए, यहाँ का सबसे फेमस है।
7: हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चाट खाने आते हैं और यहाँ पे इनका चाट मशहूर है आनंद नगर में। ये इनका चाट यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए मशहूर है।
1: अब चलते हैं शाम के बाजार में जहाँ तवे पे सिकते हैं आलू टिक्की की आवाज आ रही है।
0: अम्बेडकर नगर की चाट जनपद की सामाजिक संस्कृति का सा है। मुख्य सामग्री है आलू की टिक्की, उबले मटर या चना, दही, इमली की मीठी चटनी, हरा धनिया, पुदीना की चटनी, चाट मसाला, सेव और धनिया।
1: इतिहासकार बताते हैं कि चाट की शुरुआत उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान मानी जाती है, जहाँ मसालों का संतुलन स्वाद और पाचन दोनों के लिए किया जाता है।
0: यहाँ की खासियत है स्थानीय मसाले मिश्रण, दुकानदार परिवार पीढ़ियों से मसालों का संतुलन सीखते आए हैं। मेले, रामलीला, ईद, सामाजिक आयोजन, हर घर हर जगह चाट की धूम मची रहती है।
1: अब बात करते हैं खजला के, जो विशेष रूप से गोविंद साहब मेले में प्रसिद्ध है।
0: खजला मैदा, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाने वाला परतदार और कुरकुरा व्यंजन है। इसे कई परत में बोलकर, मरोड़कर और धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए लोग इसे मेले से घर लेकर जाते हैं।
1: पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ये व्यंजन धार्मिक आस्था और स्वाद का संगम है।
0: अब चलते हैं खेतों की ओर, जहां लाल गन्ने की फसल लहरा रही है।
1: लाल गन्ने की गोटी ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। विधि है मैदा और चावल के आटे में मोइन डालकर कड़ा गूंदना, लोई बनाकर छड़ जैसा आकार देना, धीमी पर तलना, गुड़ की गाढ़ी चाशनी में डुबोना, लकड़ी के बर्तनों में फैलाकर सुखाना और ठंडा होने पर गुड़ की सफेद या भूरे रंग की परत जम जाना, यही है इसकी पहचान।
0: यह उत्पाद अयोध्या, सुल्तानपुर, बसंती, आजमगढ़ तक लोकप्रिय है। फसल उत्सव और ग्रामीण मेलों में इसका विशेष महत्व होता है।
1: अब बात करते हैं रोजगार।
0: जनपद में लगभग 105 से अधिक इकाई, 400 प्रत्यक्ष, 500 अप्रत्यक्ष रोजगार, 55 से अधिक विमम निर्माण इकाई, 50 से अधिक स्ट्रीट वेंडर और स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। भट्टी ब्लॉक को एक उत्पाद के तहत इन व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है।
1: ये सब सुनकर लगता है कि अम्बेडकर नगर का स्वाद अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये तो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है।
0: बिल्कुल, और इसके बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार, दूरसंचार की सोच और लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC योजना। सरकार का उद्देश्य साफ है, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
1: लेकिन RJ सरकार सिर्फ योजना बनाती है, ये जमीन पर भी मदद पहुंचा रही है।
0: अरे अब तो सरकार सीधा कारीगरों और छोटे उद्योग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सोचिए, जो हलवाई कभी सिर्फ मेले तक सीमित था, आज उसकी मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर होकर दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह घर में खचला बनाते थे, आज उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: वाह, यानी परंपरा प्रोफेशन बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार द्वारा उद्यमी को मिल रही है कई सुविधाएं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगने पर अनुदान और सब्सिडी, मुद्रा योजना और बैंक ऋण के माध्यम से आसान वित्तीय सहायता, जिला उद्योग केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग, फूड सेफ्टी और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को उद्यम को विशेष प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पहचान।
1: यानी अब चाट के ठेले से लेके मिठाई की दुकान तक हर हाथ को मिल रहा है सरकार का साथ।
0: सही कहा आपने RJ जी, सरकार की कोशिश है कि अम्बेडकर नगर की हर पारंपरिक स्वाद को सिर्फ स्थानीय पहचान न रहे बल्कि ब्रांड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने।
1: और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहाँ परंपरा भी बचे, रोजगार भी बढ़े और युवा अपने जिले में ही भविष्य तलाशे।
0: बिल्कुल,
8: भी है कन्विक्शन, भी है इनोवेशन, भी है इंस्पिरेशन, भी है शेयर्ड वैल्यूज, है शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
9: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की

0: की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आज का यह हुनर सिर्फ तवे और कढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत बनता जा रहा है।
2: यानी सरकार स्वाद को बना रही है, ब्रांड और परंपरा को दे रही है मार्केट।
1: कुछ चुनौतियां भी हैं, आधुनिक मशीनरी और अभाव गुणवत्ता के असंगति स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां, लेकिन सरकार प्रशिक्षण और जागरूकता इन चुनौतियों को अवसर में बदल रही है।
2: तो श्रोताओं, अम्बेडकर नगर की ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और विकास की कहानी है।
1: जब देसी घी की खुशबू, चाट की चटकार, खजले की कुरकुराहट और गन्ने की रोटी की मिठास सब मिलते हैं, तब बनता है विकास का स्वाद।
3: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जहाँ परंपरा भी है,
1: प्रगति भी है
0: और हर थाली में आत्मनिर्भरता की मिठास भी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी। आज हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के खाने पीने की चीजों के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, और मेरे साथ थी आरजे शिका। और तो शिका, आप चले?
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आप रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
4: पाए सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।
5: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
6: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर, कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है। सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। एक छोटी सी गलती, एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ओटीपी कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, एटीएम और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है। इसीलिए सतर्क रहिए और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए, ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें, तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगी यानी कि शिकार बन जाते हैं। और ऊपर से भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर डर जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी।
0: तो सबसे पहले आप बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर्स हैं, जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स हैं उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में।
0: क्या बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब पीएचडी भी कर रखी है आपने, फिर एडवोकेट।
1: पीएचडी मेरी ऑनरिस कोर्स में है, मानत उपाधि जिसको बोलते हैं, तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा समाज में जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है, जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है, उनको हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था।
0: तो मतलब पीएचडी के बाद मतलब हाँ एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में?
1: देखिए, जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी, और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाता था मैं उससे पहले। फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है एमबीए करना चाहिए, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए। फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा, उनके लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था। और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ, कुछ हैपनिंग हुई, मैंने कहा नहीं, अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं।
0: और मुझे लगता है कि सर, जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सर, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है?
1: देखिए, हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है, वो एकदम 10 रुपए में मिलती है, तो कस्टमर क्या होता है, एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। उसी लालच में हम क्या करते हैं, किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके क्या होता है, जैसे कई एक जो मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है, या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
0: उसके फोन में कनेक्ट
1: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी हैं उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस, और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है, और जिससे हमें नुकसान हो सकता है, वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना।
0: लेकिन
1: आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे भी है। तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना। यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ आप किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता, हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
1: हाँ रीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइबर अपराध जो है, पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया, आप आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है। वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि वही जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
0: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
1: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
0: एक आसान जरिया।
1: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो आपका अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दें, और याद रखिए ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है।
0: बिल्कुल
1: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, बिल्कुल, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया। उसने ओटीपी डाला, आपने आपके अकाउंट से जो भी उसको चीज
0: पैसे चाहिए थे
1: या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
0: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
1: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में
0: चाबी दे दी।
1: तो जब आपने ओटीपी दे दिया, तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
0: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है। बिल्कुल, वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोता ओटीपी कोई भी हो देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी, पैन या पासवर्ड मांगता है?
1: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे, मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो वित्तीय संस्था है, वो कभी भी ओटीपी, पिन, एटीएम या CVV या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते। ये ऊपर से आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है, और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए, तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा ना करें।
0: बिल्कुल श्रोताओं, नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
0: बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आपने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए एकदम, आते नहीं। तो कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर क्यूआर कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें, तत्काल उसको फोन को ब्लॉक कर दें। और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मैलिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें बिल्कुल भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश वो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए।
1: बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
0: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
1: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा? तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे दीजिए, तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए सर आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
1: देखिए, सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है, क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन क्यूआर कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल। पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कई केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने क्यूआर कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये
1: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
0: ये बिल्कुल
1: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: देना है,
1: और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोता। और
1: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी ओटीपी जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको भी साझा ना करें।
0: बिल्कुल। और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसे चाहिए? तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करिए कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर? ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
1: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए?
0: बिल्कुल, मैसेज क्यों करेगा?
1: मैसेज क्यों करेगा?
0: क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख लें।
1: आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आप आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया है, या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
0: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में श्रोताओं। आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
1: देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं। कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ईडी से हम बोल रहे हैं, कभी एसबीआई सीबीआई से, सॉरी, कभी वो सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
0: बिल्कुल,
1: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
0: क्या बात।
1: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
0: नहीं है,
1: ठीक है। किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले

0: उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं। हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
0: देखिए, लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं वो फोटोज डाल देते हैं या बैंक की जानकारी देते हैं, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
1: तो प्रूफ मिलेगा उनको,
0: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
1: सर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं। इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं क्योंकि आप डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब व्हाटएवर कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लगे हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेकें,
1: यानी कि सस्ते की चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
0: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचे, अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें, जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है, या आपको इतने परसेंट छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा, तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनें, अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
1: क्या बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
0: जी देखिए, बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं, कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में जैसे कोई एकदम एडवर्टीजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसकी डीप में और ज्यादा विंडो जो है URL पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, हर चीज को, हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती उसी तरीके
1: बिल्कुल,
0: से
1: बिल्कुल
0: स्क्रीन पे हर चीज आपके बेनिफिट की नहीं होती है ना, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें एकदम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है श्रोताओं, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
0: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लगे हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता। जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
1: दुगना हो जाएगा।
0: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं, तो सबसे पहली चीज कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
0: देखिए अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि भाई एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। हाँ, इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट अपनी लॉन्च करनी है। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है, ठीक है। पैसे को रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट आपने लॉन्च कराएंगे तो पैसे की वापसी चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: तो क्या सर ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है। अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी है, टाइमली आपने एक्शन लिया है, तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी
1: जल्दी करी है। बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पैसे
0: आपके वापस हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है, आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कंप्लेंट लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहां से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहाँ पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है, ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
0: खाता तुरंत फ्रीज कराना जरूरी होता है, क्योंकि वो साइबर अपराधी जिसने करी है तो दोबारा भी ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश
1: करेगा।
0: जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो पैसे से ट्रांसफर होगा नहीं उसमें, और कंप्लेंट आप लॉक करा देंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होगा किसी अन्य खाते में गया होगा तो ट्रेस हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो जब अकाउंट ट्रेस हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा जो रकम हमारे अकाउंट से गई है वो वापस आ जाए।
1: सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रोताओं के लिए आपकी सबसे 5 महत्वपूर्ण सलाह क्या हो सकता है?
0: देखिए मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यही एक एडवाइस करूंगा, तो पहला तो ये कि आप कभी भी अपना OTP किसी को मत दीजिए, पिन आपका है, पासवर्ड है, कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें बिल्कुल भी। दूसरा ये कि कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें।
1: इग्नोर करना है।
0: तीसरा ये कि QR कोड सोर्स समझकर स्कैन करें, जैसे हमारी आदत है ना हम कहीं भी QR कोड स्कैन कर लेते हैं। कहीं भी पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं तो सोच समझ के स्कैन करें उसको, ठीक है। चौथा ये कि जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ना लें। और पांचवा ये है कि अगर ठगी होती है आपके साथ तो सबसे पहले आपको 1930 पे साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर, इस पे तुरंत शिकायत अपनी जो है दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं।
1: क्या बात है।
0: ये
1: सर जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे?
0: देखिए कम्युनिटी आपका रेडियो है तो आप कम्युनिटी के बात करते हो और हर बार आप अवेयरनेस की कुछ ना कुछ लोगों को इतना आप जो है अवेयर करते हो, आप के माध्यम से जो है हमारी श्रोताओं से बात हो पाती है, तो मैं यही बस अभी आपके कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स है कि साइबर सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है, ये है ना, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नीड है। और घर का ताला टूटने से तो नुकसान सीमित होता है, लेकिन मोबाइल अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सुरक्षा टूट जाए तो जीवन भर की कमाई आपकी खतरे में
1: पड़ सकती है।
0: तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के नियम अवश्य सिखाएं। और जो है OTP पिन और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, इन्हें कभी भी किसी के साथ भी साझा न करें। और याद रखिए, साइबर अपराधी आपके बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ते, वे आपकी सावधानी तोड़ते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि जो है अलर्ट रहें, अवेयर रहें।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब हम लेते हैं ऐसे जाने की इजाजत। आई होप कि आपने बातें सुनी और अब इसको फॉलो भी करेंगे, और फिर हम मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, एक नई बातों के साथ, जिसके माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलते रहे। इनफैक्ट हमें भी अच्छी जानकारियां मिलती है। और ये जो आजकल साइबर क्राइम जो हो रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
2: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
3: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
2: जी,
3: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
2: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
2: जी,
4: जिसका नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
2: चलिए बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
4: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
2: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
4: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
2: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
4: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
2: करेक्ट करेक्ट।
4: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
4: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
2: बहुत जरूरी है।
4: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पे हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी बढ़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
2: उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
4: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
2: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देके जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
4: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
2: आई थिंक
4: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
2: क्या बात है।
4: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
2: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है,
4: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
2: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना।
4: बिल्कुल।
2: जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
4: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, भी अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
2: हर किसी बंदे को हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं फैमिली में चल रही है,
4: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होके मत बैठ, मैं यहाँ पे आया हूँ, उसका ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
3: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
4: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
2: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
4: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
2: ओके,
4: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
2: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का यू नो जिक्र होता है?
4: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
2: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
4: PIL,
2: PIL का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
4: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
2: लिटिगेशन के बारे में बात।
4: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
2: ठीक है,
4: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
2: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
4: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
2: करेक्ट,
4: उसको बैठ के
2: समझौता किया जाए, बेसिकली
4: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कम्पनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए,
2: मतलब दोनों पार्टी के बीच।
4: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
2: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
3: जी। हाँ,
2: यस। तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
4: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
2: हाँ, ठीक है,
4: सुनी होगी ना?
2: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
4: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
2: करेक्ट
4: ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका होती है।
2: राइट,
4: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए ये फाइल नहीं कर सकता,
2: ठीक है,
4: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की है वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और

0: सी है,
1: तो
0: एक
1: दिस इज अ पब्लिक प्लेस बेसिकली,
0: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या,
1: पानी की समस्या
0: है, सार्वजनिक समस्याओं की कोई,
1: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
0: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी
1: आप पब्लिक के लिए,
0: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं
1: राइट,
0: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL डाल
1: बेसिकली मॉडल पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
0: है, बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके।
1: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर पहला क्वेश्चन। इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेसिकली।
0: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही,
1: जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
0: पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है, पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का है होता हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम PIL उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और एप्लीकेशंस।
2: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
0: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
1: ठीक है,
0: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते, उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशन है और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर अच्छा ये बताइए, PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
0: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं,
1: ठीक है,
0: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
1: ठीक है,
0: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
2: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
0: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप PIL दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेट पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
0: पर्यावरण संरक्षा सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो PIL की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था,
1: करेक्ट, अरावली, हाँ,
0: तो अरावली हिल्स क्या था, अरावली हिल्स में ये था कि वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे वो खनन वहाँ पे कर रहे थे, वहाँ उस खनन की वजह से जो वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं,
1: करेक्ट। दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कभी कभी होता है ना मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन।

0: लेतू। हाँ जी सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे होंगे ये है क्या, व्हाट इज दिस PRL, इसके थोड़ा सा इसका एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
1: देखिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से, ध्यान रखना।
1: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIL की फुल फॉर्म।
0: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है। पब्लिक इंटरेस्ट
1: लिटिगेशन
0: यार, पब्लिक सीखने को मिली है,
1: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो
0: सर,
1: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
0: ओके
1: ठीक है,
0: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं, और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए, हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आपको गूगल नहीं करना
2: चाहिए, गूगल करके निकाल लेंगे तुम ये।
0: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। वेल आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
2: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
1: यस बिल्कुल कराई जा सकती है, अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हम सरकारी नीतियों योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो, तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
2: क्या बात
0: okay.
2: है
0: so, अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा।
1: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो PIL का महत्व और ज्यादा की बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे हैं ना गूगल पे, तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
0: एब्सोल्युटली 100%
1: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है, और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी करें, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है, तो इसको लेके भी कई PIL जो है दाखिल करी थी, और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शंस दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए,
0: नहीं होना चाहिए,
1: तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
0: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
1: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी, जैसे चुनाव पारदर्शिता
0: से, तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
1: भाई ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने, तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही,
0: करेक्ट करेक्ट वही ना,
1: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
0: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
1: हाँ
0: इस पे हम बात कर रहे हैं अभी,
1: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
0: रहती
1: है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
1: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको लेके जो है कई एक एनजीओज हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, एनजीओ से एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी पीआईएल या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको लेके अगर पीआईएल दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और पीआईएल के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
0: ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, और ये जो आपका पीआईएल का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ। एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में। एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे। एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
1: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी एफएम मुरादाबाद 89.6 है, इसको सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए, और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
0: भी अपने ऐड कीजिए,
1: अपने घर वालों को भी सुनाइए एफएम।
0: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
1: अच्छा,
0: के लोग हैं।
1: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा मैं, जी सर, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता
0: है, हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
1: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
0: गॉट इट सर, और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज, और ये आम जनता की आवाज, इसीलिए हम आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
2: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे में, लेकिन पता भी
0: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा आज का, तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग, मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
2: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्होंने
0: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा, और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था, तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सी तू अपना सायोनारा करेगी या नहीं है ये बता भी।
2: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
0: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना।
2: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं,
0: वो मुझे नहीं पता, फिलहाल ये लीगल टॉक से यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, इट्स नॉट रेसिपी शो।
2: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं, हम श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रॉक मचाते रहिए
0: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए। और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो। तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, नमस्कार।
3: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री,
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: AG the Gangster.
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और आज मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, एक बार फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हाँ, हम बताते हैं उन कहानियों को जिनमें स्वाद भी है, संस्कार भी है और स्वरोजगार का विस्तार भी है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है? मेरी प्यारी दोस्त आरजे ईशी। हेलो ईशी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो।
1: आपकी अपनी आरजे इशी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं पूर्वांचल की उस धरती पे जहाँ मिठास सिर्फ चीनी में नहीं परंपरा में घुली है। जी हाँ, आज की कहानी अम्बेडकर नगर।
0: यहाँ की गलियों में सुबह की शुरुआत होती है बालूशाही और देसी घी की खुशबू से, और शाम ढलती है चाट की चटपटी महक, और मेलों में खजला वे लाल गन्ने की गोटी की मिठास लोगों को जोड़ती है।
1: बालूशाही का नाम लेते ही मन में एक तस्वीर आती है, बाहर से कुरकुरी अंदर से नरम चाशनी में डूबी हुई।
0: बालूशाही उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। खास करके इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगलानी रसोई से प्रेरित मिठाई है, बादुशाह या बदुशाह से मिलता जुलता है। अम्बेडकर नगर की बालूशाही की खासियत है कि देसी घी में धीमी आंच पर तलना, मुख्य सामग्री जैसे मैदा, घी, मोयन के लिए दही, बेकिंग सोडा और हल्की फुलावट के लिए इलायची और गाढ़ा चीनी का चाशनी।
1: और इसका टेक्सचर कैसे बनता है?
0: घोल को ज्यादा नहीं गूंधा जाता, हल्के हाथों से मोड़ कर गोल आकार दिया जाता है ताकि तलने पर अंदर से परत बने। धीमी आंच पर तलकर गुनगुनी चाशनी में डुबोया जाता है। यही तकनीकी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम बनाती है।
1: विवाह, तिलक, दीपावली, होली, हर शुभ अवसर की शान।
0: जी हाँ, यही अतिथि सत्कार और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से इसकी विधि मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं।
2: एक जनपद एक व्यंजन जो सरकार की नई पहल है, इसके अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर में बालूशाही और चाट का चयन किया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के ग्रामीण बाजारों में, हाटों में, चौराहों पे बालूशाही बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत बड़े स्तर पे बिक्री होती है इसकी। साथ ही जनपदवासी चाट का भी बहुत लुत्फ उठाते हैं और चाट को भी बहुत पसंद करते हैं। अंबेडकर नगर का खजला गोविंद साहब के मेले में बहुत ही पसंद किया जाता है और मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसी प्रकार से बुनिया भी अतिष्ठानों और अलग अलग अवसरों पे बनाया जाता है जनपद में। बालूशाही और चाट और इस तरह के जितने भी ये व्यंजन है, और इस पहल से ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि छोटे उद्यमियों को हम बढ़ावा दे पाएंगे और जनपद में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये अनोखी पहल उत्तर प्रदेश को निश्चय ही पूरे देश में और विश्व में एक अलग पहचान।
3: अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही है, और अग्रारी मिष्ठान भंडार की बहुत फेमस बालूशाही है। अगल बगल के 10-15 किलोमीटर के एरिए में, क्या और ज्यादा दूर तक, मतलब समझ लीजिए पूरे जिले में बहुत फेमस बालूशाही है, बहुत अच्छी बालूशाही है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही, बहुत स्वादिष्ट बालूशाही है।
4: सरकार एक व्यापारियों के लिए एक स्कीम लेकर के आई है, एक जनपद एक व्यंजन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: भाजपा सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी योजना है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा ही, साथ ही अम्बेडकर नगर जनपद की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो उससे हर तरह से बहुत फायदा सभी लोगों को, पूरे जनपद को मिलेगा। और इसके लिए भाजपा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद को इतनी अच्छी योजना दी है, जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा और हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
5: चाट यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप सब आइए और खाइए, यहाँ पर एकदम साफ सुथरे से चाट बनता है और यहाँ की क्वालिटीज जो है बहुत बढ़िया है। बस आप लोग यहाँ पर आइए आनंद नगर चौराहा किसने चाट भंडार।
6: चाट जो है भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनता है, और दूसरी बात चटपटा इसमें उतना ही रहता है जितना आदमी अच्छे से मजे लेके खा सकता है। तो हम तो बोलेंगे कि आप एक बार आइए और जरूर ट्राई कीजिए, यहाँ का सबसे फेमस है।
7: हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चाट खाने आते हैं और यहाँ पे इनका चाट मशहूर है आनंद नगर में। ये इनका चाट यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए मशहूर है।
1: अब चलते हैं शाम के बाजार में जहाँ तवे पे सिकते हैं आलू टिक्की की आवाज आ रही है।
0: अम्बेडकर नगर की चाट जनपद की सामाजिक संस्कृति का हिस्सा है। मुख्य सामग्री है आलू की टिक्की, उबले मटर या चना, दही, इमली की मीठी चटनी, हरा धनिया, पुदीना की चटनी, चाट मसाला, सेव और धनिया।
1: इतिहासकार बताते हैं कि चाट की शुरुआत उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान मानी जाती है, जहाँ मसालों का संतुलन स्वाद और पाचन दोनों के लिए किया जाता है।
0: यहाँ की खासियत है स्थानीय मसाले मिश्रण, दुकानदार परिवार पीढ़ियों से मसालों का संतुलन सीखते आए हैं। मेले, रामलीला, ईद, सामाजिक आयोजन, हर घर हर जगह चाट की धूम मची रहती है।
1: अब बात करते हैं खजला के, जो विशेष रूप से गोविंद साहब मेले में प्रसिद्ध है।
0: खजला मैदा, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाने वाला परतदार और कुरकुरा व्यंजन है। इसे कई परत में बोलकर, मरोड़कर और धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए लोग इसे मेले से घर लेकर जाते हैं।
1: पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ये व्यंजन धार्मिक आस्था और स्वाद का संगम है।
0: अब चलते हैं खेतों की ओर, जहां लाल गन्ने की फसल लहरा रही है।
1: लाल गन्ने की गोटी ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। विधि है मैदा और चावल के आटे में मोइन डालकर कड़क गूंदना, लोई बनाकर छड़ जैसा आकार देना, धीमी पर तलना, गुड़ की गाढ़ी चाशनी में डुबोना, लकड़ी के बर्तनों में फैलाकर सुखाना और ठंडा होने पर गुड़ की सफेद या भूरे रंग की परत जम जाना, यही है इसकी पहचान।
0: यह उत्पाद अयोध्या, सुल्तानपुर, बसंती, आजमगढ़ तक लोकप्रिय है। फसल उत्सव और ग्रामीण मेलों में इसका विशेष महत्व होता है।
1: अब बात करते हैं रोजगार।
0: जनपद में लगभग 105 से अधिक इकाई, 400 प्रत्यक्ष, 500 अप्रत्यक्ष रोजगार, 55 से अधिक विमम निर्माण इकाई, 50 से अधिक स्ट्रीट वेंडर और स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। भट्टी ब्लॉक को एक उत्पाद के तहत इन व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है।
1: ये सब सुनकर लगता है कि अम्बेडकर नगर का स्वाद अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये तो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है।
0: बिल्कुल, और इसके बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार, दूरसंचार

0: उसकी मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर होकर दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह घर में खचला बनाते थे, आज उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: वाह, यानी परंपरा प्रोफेशन बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार द्वारा उद्यमी को मिल रही है कई सुविधाएं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगने पर अनुदान और सब्सिडी, मुद्रा योजना और बैंक ऋण के माध्यम से आसान वित्तीय सहायता, जिला उद्योग केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग, फूड सेफ्टी और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को उद्यम को विशेष प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पहचान।
1: यानी एक चाट की ठेले से लेके मिठाई की दुकान तक हर हाथ को मिल रहा है सरकार का साथ।
0: सही कहा आपने आरजेशी, सरकार की कोशिश है कि अम्बेडकर नगर की हर पारंपरिक स्वाद को सिर्फ स्थानीय पहचान ना रहे बल्कि ब्रांड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने।
1: और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहां परंपरा भी बचे, रोजगार भी बढ़े और युवा अपने जिले में ही भविष्य तलाशे।
0: बिल्कुल, आज का यह हुनर सिर्फ तवे और कढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत बनता जा रहा है।
1: यानी सरकार स्वाद को बना रही है, ब्रांड और परंपरा को दे रही है मार्केट।
0: कुछ चुनौतियां भी हैं, आधुनिक मशीनरी और अभाव गुणवत्ता की असंगति, स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां, लेकिन सरकार प्रशिक्षण और जागरूकता इन चुनौतियों को अवसर में बदल रही है।
1: तो श्रोताओं, अम्बेडकर नगर की ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और विकास की कहानी है।
0: जब देसी घी की खुशबू, चाट की चटकार, खजले की कुरकुराहट और गन्ने की रोटी की मिठास सब मिलते हैं, तब बनता है विकास का स्वाद।
2: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई सुबह की नई कहानी, लिख रहा है यूपी आज अपनी जुबानी।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: बवाना में लगभग 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय के वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपलब्धि दर्ज। और फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु के निर्देशों के बाद जनता की शिकायतों के त्वरित निपटारे और पुलिस जन संवाद को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल के अंतर्गत राजधानी के सभी थानों में प्रत्येक शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इस दौरान लोग अपनी शिकायतें, सुझाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दे सीधे पुलिस के समक्ष रख सकेंगे। इन कार्यक्रमों में विशेष पुलिस आयुक्त से लेकर सहायक पुलिस आयुक्त स्तर तक के अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। पुलिस आयुक्त हरगोबिंद सिंह धालीवाल ने कहा कि यह निर्णय लोगों के हित में है। उन्होंने कहा कि इससे शिकायतकर्ताओं के लिए हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा होगा जब वे थाने जाकर अपने जांच अधिकारी या पर्यवेक्षक अधिकारी से मिल सकेंगे।
6: हर शनिवार विदाउट फेल, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे ना हो, चाहे 15 अगस्त, 26 जनवरी के अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन हर शनिवार को 10 से 2 बजे पुलिस थाने में एटलीस्ट मिनिमम स्टाफ मिलेगा, जो कि जिसकी कंप्लेंट है, जो उस थाने में रहता है या उस थाने में जिसने दी है, अगर वो कंप्लेनेंट जाएगा उसकी सुनवाई होगी।
5: दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ने ऑपरेशन विश्वास के तहत पिछले 2 महीने में 1,000 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। इसके अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में तकनीकी निगरानी, फील्ड इंटेलिजेंस, दूर संचार सेवा प्रदाताओं और अन्य उपायों की मदद से मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज

0: राजधानी में 28 घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित राज्य के सभी सांसद, विधायक और हजारों स्वयं सेवकों ने श्रमदान किया। इसमें चिल्ला गांव घाट, निजामुद्दीन घाट, सोनिया विहार, कालिंदी कुंज समेत कई घाट शामिल हैं। सफाई अभियान में जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और 500 से अधिक सामाजिक तथा स्वयंसेवी संगठनों, हजारों स्वयंसेवकों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। श्रीमती गुप्ता ने गीता कॉलोनी घाट पर श्रमदान करते हुए कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाना दिल्ली सरकार तथा समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
1: हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं ने श्रमदान दिया। लगातार यहाँ यमुना सफाई का काम चल रहा है। मैं ये सोचती हूँ यमुना सफाई जहाँ सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें। हमें मिलकर के काम करना होगा। मैं सभी वॉलंटियर्स का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने 22 किलोमीटर लंबी यमुना पर अलग अलग पॉइंट पे श्रमदान दे करके माँ यमुना की आज सेवा की है।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना पुनर्जीवन के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत नजफगढ़ क्षेत्र में 860 करोड़ रुपए की लागत से 12 नई स्थानीय अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित किए जा रहे हैं ताकि अपशिष्ट जल को यमुना में जाने से रोका जा सके। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पुराना लोहा पुल स्थित यमुना छठ घाट पर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि केवल धन खर्च करने से नदी का जीर्णोद्धार संभव नहीं है और इसके लिए जन भागीदारी और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। श्री गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ घाट और निर्मल यमुना दिल्ली की सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पहचान के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यमुना की गरिमा बहाल करने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने भी आज आईटीओ स्थित हाथी घाट पर यमुना स्वच्छता महाअभियान में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अभियान में हजारों नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर स्वच्छ, सुंदर और निर्मल यमुना के निर्माण के संकल्प को मजबूत किया है।
2: पूरे दिल्ली की सफाई के साथ साथ जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है माँ यमुना को साफ करना, वो हमको करके दिखाना है। माँ यमुना को साफ करना ये हमारी जान है, ये हमारा कर्तव्य है और अगर हम इसको साफ करेंगे तो दिल्ली का पर्यावरण भी ठीक होगा और लोगों को एक अच्छा स्थान मिलेगा। पूरा सौंदर्यीकरण होगा, रिवर फ्रंट बनेगा। केवल एक विभाग नहीं, सब लोग अपनी साझेदारी से काम कर रहे हैं और आपको 3 साल के बाद में यमुना में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रास सिंह ने आज बवाना स्थित गांव पूट खुर्द में लगभग 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि ये परियोजनाएं दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।
3: इन परियोजनाओं में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, सड़कों के पुनर्निर्माण, नालियों के निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के कार्य शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि इन कार्यों से पूट खुर्द और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, जल भराव की समस्या कम होगी और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिंह ने बताया कि एक दिन पहले दीप विहार में लगभग 20 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था और अब पूट खुर्द में 10 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बवाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में इन परियोजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राजधानी में आग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कालकाजी अग्निकांड में दूसरी मंजिल पर फंसी 75 वर्षीय महिला को सुरक्षित बचाने वाले दमकल कर्मियों की सराहना की। उन्होंने दिल्ली वासियों से आग से बचाव के लिए सतर्क रहने, घरों और दुकानों की वायरिंग की जांच कराने तथा एसी और अन्य बिजली उपकरणों की नियमित सर्विस कराने की अपील की। श्री मल्होत्रा ने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली उपकरण के बढ़ते इस्तेमाल से आग लगने का खतरा भी बढ़ रहा है, इसलिए सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि अब वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक विचार विमर्शों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ता महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को दर्शाता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज ईस्ट किदवई नगर में एक पेड़ मां के नाम रविवार अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। श्री चहल ने बताया कि पिछले लगातार 28 रविवार से नगर पालिका परिषद यह अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से ऐसे प्रयास नई दिल्ली को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहायक होंगे। दिल्ली पुलिस ने लूटपाट और धोखाधड़ी मामले में कुख्यात ईरानी गैंग के सरगना नासिर हाफिज खान को उर्फ समीर के गिरोह पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों में लूट, ठगी और संगठित अपराध की वारदातों में शामिल था। दिल्ली पुलिस के अपराध नियंत्रण शाखा ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित को अधिक मुनाफे का लालच देकर 18 लाख रुपए से अधिक की राशि का 4 अलग अलग लेन देन से ली थी और आरोपी के पास से 1-2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। मामले की जाँच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र की लाल कुआं कॉलोनी में आज 5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी के साथ इन कार्यों की शुरुआत की। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत आज सुबह मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।
4: आप सभी ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने हेबिल्ड के साथ में मिलकर हमारा आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय योग संस्थान की एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है कि जैसे कि आज सवेरे 6 बजे के बाद YouTube पर लाइव स्ट्रीम में सबसे अधिक व्यूअर ने पार्टिसिपेट करके जो पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसे भी काट दिया है। 45 मिनट का ये जो योग प्रोटोकॉल था वो सभी ने एक साथ आकर यहाँ पर किया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं जो भी लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया वो सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। देशभर में लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक रविवार को इसका आयोजन किया जाता है। इस इवेंट में आज युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी शामिल हुए। फिट इंडिया के एम्बेसडर जितेंद्र आडवाणी ने इस मुहिम को चलाए जाने के लिए फिट इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया।
5: मैं फिट इंडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये फिट इंडिया मूवमेंट को इनिशिएट किया है, जिसके माध्यम से इतने लोग जुड़े हैं। ऑलमोस्ट 10 साल से ये इनिशिएटिव चल रहा है और हर आदमी जो है अपने स्वस्थ और वेलनेस के प्रति जागरूक हो गया इस मुहिम के थ्रू। और इस मुहिम को जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह से, बिकॉज हर कोई जो आजकल अपने लाइफ स्टाइल की वजह से जो है फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, इस इनिशिएटिव के माध्यम से जुड़ के अब जागरूक हो गया है और अपने लिए टाइम निकाल रहा है फिटनेस के लिए।
0: दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली पुलिस शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित करेगी। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज राजधानी में 28 घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रास सिंह ने बवाना में लगभग 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय के वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपलब्धि दर्ज। और फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
7: अच्छा
6: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
7: वो क्या है मम्मी जी?
6: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
7: आम भी ना मम्मी जी।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
9: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्रीमती अभिलाषा विनय, श्री हेमंत जगदीश शर्मा और श्री दिव्य हंस दीपक। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं श्री दिव्य हंस दीपक।
10: नमस्कार मित्रों, जब कवि और कविता की बात चलती है तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक कविता को कवियों ने अपने अपने नजरिए से देखा। कभी पंत जी कहा करते थे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। फिर कविता का यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। कवि गोपाल दास नीरज जी ने लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। फिर धीरे धीरे कविता वर्तमान काल में पहुंची और वर्तमान काल में कवियों ने कविता को किस नजरिए से देखा। बुलंदशहर के डॉक्टर रामपाल शर्मा विश्वास जी लिखते हैं कि अंतरतम के पट खोले तो कविता होती है, घट घट वंशी वट डोले तो कविता होती है, जीवन में नवरस घोले तो कविता होती है, कवि नहीं कविता बोले तो कविता होती है। और कवि से कविता से कोई भी होता भव्य नहीं, कवि की दुनिया से कोई भी दुनिया दिव्य नहीं, और कविता मन का शून्य यह भावों का शून्य नहीं, मात्र भावना भड़काना कवि का कर्तव्य नहीं। फिर कविता ने धीरे धीरे अपना रास्ता तय किया और वर्तमान काल में पहुंची तो कवि डॉक्टर सुनील जोगी जी ने कविता के बारे में लिखा कि वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर जी के स्वर में हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है, वो कविता है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। श्रोताओं, मैं आज के इस कार्यक्रम में आहुति देने के लिए सर्वप्रथम जो मेरे साथी हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, श्रीमती अभिलाषा विनय जी जो एक पेशे से शिक्षिका हैं। जब इनकी उपस्थिति काव्य क्षेत्र में होती है तो चार पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो जिनके घर में हैं बेटी नसीब उन सबके जागे हैं, वो जिनके घर में हैं बेटी नसीब उन सबके जागे हैं, कई धनवान बिन बेटी यहाँ कितने अभागे हैं, और कोई अबला समझकर इनको अब कमजोर ना समझे, कोई अबला समझकर इनको अब कमजोर ना समझे, यकीनन बेटियां इस दौर में बेटों से आगे हैं, यकीनन बेटियां इस दौर में बेटों से आगे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं श्रीमती अभिलाषा विनय जी।
11: बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आज जो गीत लेकर के मैं आपके सामने आई हूं उसका शीर्षक है ख्वाब। ख्वाब देखना हम सभी को चाहिए। देखिए मैंने इस गीत में क्या कहने की कोशिश की है। ख्वाब

कभी, और भूल जाने की आदत जरा डालिए, दिल में जिंदा दिली का शहर पालिए, भूल जाने की आदत जरा डालिए, दिल में जिंदा दिली का शहर पालिए, चल चले।

0: कभी।
1: बहुत शानदार गीत।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
6: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
5: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: TNC अप्लाई।
7: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
8: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
7: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: सिर दर्द, लकवा, रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? यू आर लिस्निंग टू FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
4: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
5: हाँ हाँ,
4: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
5: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
4: जी,
5: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
4: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
4: जिसका
6: नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
4: चलिए बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
6: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
4: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
6: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
4: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
6: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
4: करेक्ट करेक्ट।
6: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
4: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
6: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
4: बहुत जरूरी है।
6: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी पढ़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
4: उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
6: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
4: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देके जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
6: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
4: आई थिंक
6: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
4: क्या बात है।
6: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
4: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है।
6: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है,
4: हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
4: है ना। जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
6: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके है ना, उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है। तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
4: हर किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है,

0: फैमिली में चल रही है,
1: देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ। मैं यहाँ पे आया उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे। मैं तो सीखने आया हूँ।
2: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड एलिगेशन,
1: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
1: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके,
1: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
0: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का जिक्र होता है?
1: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
0: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
1: PIL
0: का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
1: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
0: लिटिगेशन के बारे में बात करें।
1: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
0: ठीक है,
1: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
0: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
1: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकंसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
0: करेक्ट,
1: उसको बैठ के
0: समझौता किया जाए, बेसिकली
1: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए।
0: मतलब दोनों पार्टी,
1: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया है कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
0: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
2: जी। हाँ,
0: यस। तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
1: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
0: हाँ, ठीक है,
1: सुनी होगी ना?
0: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
1: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
0: करेक्ट
1: है ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और लिटिगेशन यानी याचिका होती है।
0: राइट,
1: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए फाइल नहीं कर सकता,
0: ठीक है,
1: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की ये वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
0: ओके,
1: ठीक है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होते हैं, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए।
0: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो पब्लिक
1: की बात होनी चाहिए।
0: करेक्ट,
1: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है,
0: सीवर है, दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
1: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
0: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
1: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आप
0: पब्लिक के लिए,
1: पब्लिक के लिए होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
0: राइट,
1: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरी समूह की ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL डाल
0: बेसिकली मॉडल नंबर पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
1: है। बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके।
0: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बेसिकली
1: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही।
0: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
1: हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम PIL उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं। इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और दो एप्लीकेशन।
2: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी व्यक्ति या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
1: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
0: ठीक है,
1: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते। उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशंस हैं और जो एप्लीकेशन है, वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर, अच्छा ये बताइए PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
1: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं,
0: ठीक है,
1: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
0: ठीक है,
1: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
2: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
1: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप PIL दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
1: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो PIL की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
0: करेक्ट, अरावली। हाँ,
1: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे वो खनन वहां पे कर रहे थे। बहुत उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
0: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। रीना और आनंद है जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर, आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज दिस PIL, इसके थोड़ा सा इसका यू नो एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
1: देखिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से, ध्यान रखना।
1: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIL की फुल फॉर्म
0: सर, मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट
1: लिटिगेशन
0: लिटिगेशन यार, पब्लिक सीखने को मिली।
1: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो
0: जी सर,
1: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
0: ओके
1: ठीक है,
0: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं, और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए, हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आपको गूगल नहीं करना
2: चाहिए, गूगल करके निकाल लेंगे तुम ये।
0: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। वेल आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे, हाँ प्लीज।
2: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
1: यस बिल्कुल कराई जा सकती है, अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो, तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
2: क्या बात
0: okay.
2: है
0: so, अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जरा।
1: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो PIL का महत्व और ज्यादा ही बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे हैं ना गूगल पे, तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
0: एब्सोल्युटली 100%
1: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है, और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए। जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी करें, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है, तो इसको लेके भी कई PIL जो है दाखिल करी थी, और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शंस दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए,
0: नहीं होना चाहिए।
1: तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
0: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
1: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी जैसे चुनाव पारदर्शिता
0: से, तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
1: भाई ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने, तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
0: करेक्ट करेक्ट वही ना,
1: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
0: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
1: हाँ
0: इस पे हम बात कर रहे हैं अभी,
1: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
0: रहती
1: है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
1: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको लेके जो है कई एक एनजीओस हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, एनजीओ से एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी पीआईएल या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको लेके अगर पीआईएल दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और पीआईएल के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
0: ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, और ये जो आपका पीआईएल का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ। एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में। एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे। एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
1: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी एफएम मुरादाबाद 89.6 है, इसको सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए, और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
0: भी अपने ऐड कीजिए,
1: अपने घर वालों को भी सुनाइए एफएम।
0: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
1: अच्छा,
0: के लोग हैं।
1: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा मैं, जी सर, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता
0: है, हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
1: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बन रहा है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
0: गॉट इट।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ। प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
7: इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
8: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है, और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
7: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
8: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है, और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हम हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
7: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
9: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
7: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
10: The world seeks trusted and reliable partners.
11: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
10: And a scale that few can match.
7: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
12: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
13: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
7: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice, focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham.
8: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
9: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
10: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: You are my special friend.
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
4: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

Aham. Uhum.

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: नमस्कार, मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त RJ खुशी। दोस्तों, मौसम ने आज फिर से करवट ली है। बादल छाए हैं, हवाओं में ठंडक है और दिल में प्यारी यादें जाग रही हैं। कुछ लोग चाय के साथ पकौड़े एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग किसी की DP देखकर इमोशनल हो रहे हैं। दोस्तों, मैं अकेली नहीं हूँ इस सुहाने से मौसम में, मेरे साथ अखिल जी भी हैं। हेलो, हाय अखिल जी, नमस्कार, आपका स्वागत है।
3: हेलो खुशी जी, कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं? और समोसे भी लेकर आए हैं आज, तो क्या बात है।
3: हाँ यार, बारिश में ना समोसे का तो मजा ही अलग है। और बारिश का सीजन ये जो है बिल्कुल अजीब होता है खुशी। सिंगल लोग जो बोलते हैं कि कितना सुहाना मौसम है, और कमिटेड लोग बोलते हैं बेबी अम्ब्रेला ले आना, मुझे लेके जाना है।
2: अरे वाह, हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी चटपटी बातें सुनने के लिए आपको बने रहना है, चिपके रहना है ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। अभी मिलते हैं हम आपको एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: दोस्तों स्वागत है आपका वापस मुरादाबाद FM 89.6 MHz पे। मैं हूं आपका दोस्त अखिल। शुरुआत करते हैं एक शायरी से जो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा।
1: इरशाद इरशाद।
0: बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं,
1: वाह वाह वाह,
0: दिल की पुरानी यादें फिर से मचलती हैं।
1: ओहो हो।
0: कुछ लोग चाय में सुकून ढूंढ लेते हैं और कुछ किसी के मैसेज का इंतजार करते हैं।
1: क्या बात है जनाब। वैसे मैसेज की अगर आपने बात कही है तो बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं, लिसनर हैं, इस समय वो भी अपने फोन को टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, किसी के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लो, हम हैं ना आपके साथ। आप बस प्यारी सी स्माइल करो और समझो कि हम आपके पास ही हैं।
0: अभी संध्या जी का मैसेज आया है खुशी।
1: अच्छा
0: संध्या जी है लाइन पार से ही
1: जी।
0: कहती है स्कूल की छुट्टी, गली का क्रिकेट मैच और कागज की कश्ती, हम तो ये बनाते हैं बारिश में। और क्रिकेट मैच मतलब सही है यार, मतलब आजकल जो है ना सभी में, मतलब अपने चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्रिकेट मैच की दीवानगी एक अलग ही चलती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे कागज की नाव मैंने भी बनाई है।
0: अच्छा।
1: हाँ जी।
0: तो तुम्हारी कहाँ तक चलती थी नाव?
1: काफी दूर तक जाती थी, फिर वो डूब जाती थी।
0: गली तो पार कर जाती थी? नहीं,
1: हाँ गली को क्रॉस कर देती थी।
0: बचपन में बारिश देख के हम बाहर भागते थे और आज बारिश देखकर हम कपड़े अंदर उतारने भागते हैं। चलते भैया जल्दी भागो, कहीं कपड़े जो हैं तुम्हारे
1: भीग ना जाए।
0: भीग ना जाए।
1: हाँ अखिल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जब हम छोटे थे बचपन में तो जैसे ही बारिश आती थी हम तुरंत कोई ना कोई बहाना घर से बनाकर नहाने के लिए भाग जाते थे बच्चे। और अब बड़े हो गए हैं तो अब यही ध्यान रहता है, अचानक से याद आता है, अच्छा मैंने तो आज कपड़े धोकर फैलाए थे। फटाक से जाते हैं फिर उतार कर लाते, कहीं भीग ना जाए, इतनी मेहनत तो लगती है कपड़े धोने में।
0: बचपन में जब मैं 4th-5th क्लास में था,
1: हाँ जी,
0: तब मुझे याद है कि माँ कहती थी जब भी ऐसी बारिश होती थी कि मत भीगना बेटा, तुम मत भीगना, अभी बाहर मत निकलना। और शायद ही 5-6 मिनट के बाद माँ की आवाज आ रही होती थी, वो मुझे देखती थी। मैं कॉलोनी में, क्योंकि पानी ऐसा भर जाता था थोड़ा सा ऊपर नीचे, और सामने खाली प्लॉट था तो उसमें क्रिकेट मैच खेलते थे
1: जी।
0: तो वहाँ गड्ढे में कूदे बह रहे हैं हम सबके साथ, सारे बच्चे कॉलोनी के 3-4 बच्चे शैतान अपने, तो वो अलग ही मजा था उस समय बारिश का।
1: हाँ बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं। अभी भी बारिश आती है, वो बचपन तो नहीं है लेकिन वो यादें फिर से ताजा हो जाती है।
0: मगर गड्ढे वही हैं अभी भी।
1: अच्छा गड्ढे वही हैं। तो चलो दोस्तों ये मटर गश्ती हमारी चलती रहेगी ऐसे ही। आप बस ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और कुछ खूबसूरत गीतों के बाद लौट कर आते हैं हम। रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है अखिल सर, आज तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ, और कहाँ डूबे डूबे से हैं आप?
1: एक तो ये गाना इतना अच्छा है खुशी, और मुझे एक बात पे हंसी आ रही थी कि बचपन में ना,
0: हाँ,
1: कागज की कश्ती थी, बारिश का पानी था,
0: हाँ,
1: ना टेंशन EMI की थी, ना रिचार्ज करवाना था।
0: वाह वाह वाह वाह, सुपर, ये तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने।
1: वो एक अलग ही मजे थे, और उस समय तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया है। ना कागज की कश्ती मिलती है कहीं, बारिश का पानी कभी भी आ जाता है, EMI की टेंशन
0: खत्म नहीं होती है,
1: और चार्ज कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता, एकदम मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है कि अब आप अपना फटाफट नया रिचार्ज करवा लीजिए।
0: हाँ, और अब तो ऐसा भी हो गया है, अगर हम रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो कॉलिंग भी बंद हो जाता है ना। हाँ, कॉल आ सकता है ना ही कर सकते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है
1: खुशी। हाँ, बॉलीवुड ने ना हमें सिखा दिया है कि प्यार और बारिश का कनेक्शन बहुत ही पुराना है।
0: अच्छा,
1: फिल्म में हीरो हीरोइन बारिश में डांस करते हैं,
0: हाँ,
1: और असल जिंदगी में हीरो स्कूटर साइड में लगाकर इंजन बचाता है।
0: हाँ, ये तो आपने सही बोला है। अच्छा, फिल्मों में मैंने देखा है, मुझे भी याद आया, एक फिल्म थी जिसमें माधुरी जी और शाहरुख खान जी थे, और आपको याद है वो फिल्म?
1: शाहरुख खान जी और
0: कोई लड़की है।
1: अच्छा,
0: जब वो घसती है
1: बारिश होती है, छमा छमा छम छम।
0: तो दोस्तों, ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में जब कोई लड़की होती है और वो हंसती है और बारिश होती है?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं होता है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपको क्या पता ये इंसिडेंट आपके सामने हो जाए तो कैसा लगेगा?
0: कुछ भी हो सकता है,
1: कुछ भी हो सकता है, बारिश में तो कुछ भी हो सकता है,
0: बारिश में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज छाता जरूर लेके जाए, रेनकोट भी पहने, एंड अगर बारिश नहीं है तो उसको साथ रखें, क्योंकि अपनी फुल तैयारी से रहना चाहिए।
1: और बारिश में किसी के साथ चाय पीना ना, और दिल की बातें करना, उसकी जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। बैठ जाओ चाय की टपरी पे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्या कहते हैं हम सफर के साथ, या अपने और भी जो होते हैं ना फैमिली मेंबर्स, या आपके कजन जैसे हो गए ना, मामा का लड़का और फूफा का लड़का, एकदम एकदम कांटे वाली जोड़ी होती है दोनों।
0: हाँ,
1: तो एकदम बैठ जाते हैं। और
0: अच्छा, आप ही बारिश की बातें कर रहे हैं तो मेरे जहन में आया है, क्यों ना आपसे मैं बारिश की कुछ यादों के बारे में जान लेती हूँ। आपकी बारिश की कोई ब्यूटीफुल मेमोरीज जो आपको आज भी याद है?
1: बारिश की मेरी ब्यूटीफुल मेमोरी ऐसी है कि मतलब कह भी सकते हैं ब्यूटीफुल, थोड़ी सी मैं नया नया अम्ब्रेला लेके आया था, और मतलब कहते हैं ना चांस, जैसी मैंने अम्ब्रेला खरीदा उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश चालू हो गई थी
0: जी।
1: अच्छा, PAC पे मैंने शॉप पे PAC के पास ही अपने मुरादाबाद में वहाँ पे अम्ब्रेला खरीदा था
0: जी।
1: और PAC से मेरे को जाना था अंदर दीनदयाल नगर तक।
0: ओके,
1: तो जब वो बारिश चालू हुई, वो नया नया अम्ब्रेला था, तो एक डर ये था कि कहीं मम्मी ना डांट दे तुमने जो है अभी खोला, और अभी उस समय बारिश भी ऐसी हो रही थी जब हाथ में अगर छाता नहीं खोले तो कहेगा यार तूने छाता क्यों ले रखा।
0: हाँ, छाता भी है और बारिश में भीग भी रहा है।
1: तो मैंने हिम्मत करके एकदम वो अम्ब्रेला खोला।
0: हाँ,
1: अब मजे की बात क्या थी कि थोड़ी सी आगे चला, हवा भी तेज चल रही थी, भाई वो अम्ब्रेला बिल्कुल उल्टा हो गया। मैंने वो ऊपर देखा तो तानी तानी दिख रही थी, वो पूरा उल्टा हो गया अम्ब्रेला। मैंने कहा बेटा आज तो गया, अभी तो तूने छाता खरीदा, अभी तेरे साथ ही हवा भी चल गई और तू छाते को संभालेगा, क्या संभालेगा घर, और घर में ये टेंशन नहीं कि मैं भीग जाऊंगा।
0: हाँ,
1: या मैं भीग रहा हूँ, ये टेंशन है जाके मेरी डांट जुड़ी छाता, तू उल्लू बना रहा था, तूने छाता नहीं लिया, किसी का सेकंड हैंड छाता लिया। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से करके उसे हवा जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में किया, और अपने सामने ऊपर की तरफ सामने की तरफ करके।
0: अखिल सर, आपको पता है उस सिचुएशन में ना छाता बंद भी नहीं होता है, हम कोशिश भी बहुत करते हैं, कई बार तो छाता भी उड़ जाता है इंसान के हाथों से।
1: जो भी आसपास से निकल रहा था वो ये कह रहा था अरे संभाल के। मैंने कहा भाई तुझे क्या बताऊं, मैं खुद क्या संभालूं।
0: मतलब दोस्तों की बहुत सारे हमारे जो श्रोता इस समय सुन रहे हैं ना अखिल सर, वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि साथ भी ऐसा हुआ है, ये मोमेंट हुआ है, तो वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि
1: अगर आपने छाता लिया है और हवा में वो छाता नहीं उल्टा हुआ है तो इसका मतलब आपका छाता लेना बेकार है।
0: तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ और बातें हम आपसे करेंगे, अभी लौट कर आते हैं, तब तक आप सुनिएगा कुछ शानदार गीत आपके अपने प्यारे से रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए,
0: और अखिल सर की तरह मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजी खुशी स्वागत करती है और मेरे साथ में अखिल जी भी हैं जो यहाँ पर शानदार बातें कर रहे हैं। साथियों, कभी कभी बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं होती, ये दिल के अंदर चल रहे जज्बातों का भी एक नाम होती है। जो लोग किसी को याद कर रहे हैं, ये सेगमेंट उनके नाम है। कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, आते हैं और दिल को भिगा जाते हैं। कुछ यादें मीठी सी खुशबू की तरह, कुछ यादें मिट्टी की खुशबू की तरह उम्र भर साथ रह जाती हैं।
1: क्या बात कही है, क्या बात कही खुशी जी आपने, बिल्कुल मजेदार।
0: अच्छा अखिल सर, रिलेशनशिप में सबसे डेंजरस लाइन क्या होती है?
1: मुझे लग रहा है खुशी तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम चाहती हो कि आज जो है ना अखिल का जो बैंड बज जाए। मतलब रिलेशनशिप में डेंजरस लाइन, सारी लाइन ही डेंजरस होती हैं।
0: सबसे डेंजरस लाइन क्या होती है? कुछ नहीं।
1: कुछ नहीं,
0: उसके पीछे का राज तो बहुत कुछ होता है।
1: उस कुछ नहीं के अंदर ना एक पूरा सिलेबस छुपा हुआ होता है। अभी तो पता नहीं ना उस सिलेबस क्या क्या है, वैसे पता चल जाएगा तुम्हें सिलेबस में क्या क्या होता है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर बारिश बहुत तेज है तो जो पर है ना वो उनको स्पीड वाली उस पे ले लेना, प्रोसेस पे थोड़ा तेज। जितना ज्यादा क्लियर विजन होगा ना उतनी जल्दी आप पहुंचोगे।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और कभी कभी होते हैं ना धीमी धीमी बारिश होती है, स्लोली गाड़ी चलती है और लाइट म्यूजिक होता है, कैसा लगता है वो सफर?
1: वो बहुत मतलब अच्छा सफर है। और अपना क्या है ना, सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी क्या होती है कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं, सब कुछ हर चीज आपके साथ चल रही है, मगर आपके दिमाग में ना एक हल्का सा सुकून सा माहौल होता है। कुछ बातें कुछ यादें आपको वो रियलाइज, मतलब ड्राइव भी कर रहे हैं, मौसम जब इतना अच्छा हो जाता है ना तो लगता है कि कुछ चीजें आपको याद आती हैं और आप उनको मतलब रियलाइज करके उन्हें मुस्कुराते हैं उन चीजों पे। वरना फिर बगल में जो बैठा हुआ पार्टनर कहता है यार मुझसे बात करने का तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तुम, तो ये भी एक टाइम है। हाँ। जब बगल वाले पार्टनर के साथ आप बातें कर सकते हैं, उसके कुछ उसकी भी बातें सुन सकते हैं, कुछ अपनी बातें भी उससे बोल सकते हैं।
0: जैसे हम दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और कुछ आपके साथ भी साझा कर रहे हैं कि अखिल ने, मैंने अखिल सर से मालूम किया कि आप मुझे बताइए कोई ऐसी डेंजरस लाइन रिलेशनशिप की, तो उन्होंने मुझे कुछ बातों में ही बहला दिया, प्रॉपर नहीं बताया क्योंकि उनको भी पता है कि घर जाकर अगर मैंने कुछ बोला तो पर्दा फास्ट हो जाएगा। तो आज कुछ बोलूं ना ही उसमें फायदा है।
1: खुशी, संगीता जी का मैसेज आया है।
0: अच्छा संगीता जी, नमस्कार आपको भी।
1: संगीता जी ने लाजपत नगर से हैं, कह रही मैं एक कुछ उन्होंने लिखा है, पढ़ता हूँ जरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बारिश का मौसम हो और किसी अपने का साथ हो,
0: वाह वाह क्या बात,
1: जिंदगी की हर मुश्किल उस पल में आसान हो। क्या बात है संगीता जी ने, बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा लिखा है।
0: बहुत खूबसूरत इन्होंने लाइनें लिखी। जिंदगी की जो मुश्किलें हैं ना वो आसान हो जाती हैं जब अपना हम सफर अपने साथ होता है।
1: चलिए बाकी ये गाने का ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ दोस्तों, और लौट कर आएंगे कुछ और बातों के साथ, कुछ नई शायरियों के साथ। अखिल सर आज पूरे शायराना अंदाज में यहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं।
1: ये तो शायराना अंदाज हमारे साथियों का है जो हमें मैसेज कर रहे हैं, इतने अच्छे मैसेज किए। अगर आपके पास भी कोई मैसेज है ऐसा जो आप कहना चाहते हैं तो आप हमें जरूर उसे मैसेज करें 9837896 और 896 पर।
0: आपकी शायरियाँ सुनकर ना मुझे अखिल सर एक गाना याद आ रहा है,

0: स्वागत है आप सभी का वापस मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। एक शायरी है जो मैं बोलना चाहूँगा। तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी खुशियाँ मेरी जान बन गई, कुछ इस तरह समा गए हो तुम दिल में कि हर धड़कन तेरा नाम बन गई।
1: वाह वाह, क्या बात है अखिल सर, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं आपकी। और ये शायरी सच में मतलब दिल को छू गई है। और प्यार इतनी खूबसूरत चीज होती है ना कि इसमें इंसान खुद को भूलकर सामने वाले की खुशियाँ ढूंढने लगता है।
0: ये बात तो सही कही आपने खुशी जी।
1: मैं भी कुछ चंद लाइनें कहना चाहती हूँ।
0: इरशाद,
1: कि चांद से हसीन चेहरा है तुम्हारा, चांद से हसीन चेहरा है तुम्हारा, फूलों से प्यारा है साथ तुम्हारा, दुनिया की हर खुशी कुर्बान कर दूं, कि दुनिया की हर खुशी कुर्बान कर दूं, अगर मिल जाए उम्र भर साथ तुम्हारा।
0: क्या बात खुशी जी, क्या बात, लगता है कुछ है मामला।
1: ये मामला बिल्कुल है। ये ना हमारे साथियों से और हमारे प्यारे से रेडियो से हमारा ये रिश्ता है, और हम बस यही चाहते हैं कि उम्र भर ये साथ निभाए हम सब मिलकर।
0: बिल्कुल सही बात कही। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई खास है तो उसके लिए प्यारा सा मैसेज करिए हमें, हम बोलेंगे और उसे बताएंगे कि सच में आप उसके लिए कितने खास हो।
1: अच्छा अखिल सर, कभी कभी प्यार की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि सामने वाला कुछ कहे बिना भी सब कुछ समझ जाता है।
0: हाँ, ये तो है, ये तो एक मतलब कहते हैं ना, साइलेंट फीचर है प्यार का।
1: आप कुछ कहो भी नहीं और आंखों आंखों में सारी बातें हो जाती है।
0: ये बात भी है। देखिए, उन्होंने लिखा है विकास जी ने,
1: हाँ,
0: दीनदयाल नगर से
1: जी।
0: ना चांद चाहिए ना सितारों की बारात चाहिए,
1: वाह वाह वाह,
0: बस हर सुबह तेरे नाम की शुरुआत चाहिए।
1: ओए होए,
0: क्या बात, बिल्कुल लगे रहिए, कभी ना कभी बिल्कुल मतलब जो आपने बोला है ना हो जाएगा। सुबह सुबह मैडम आपको कहेंगी अरे उठो जी चाय तो पी लो।
1: सुबह सुबह अगर आप ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली एक दिन वो दिन भी जरूर आएगा जब मैडम आपको बोलेंगी सुनिए जी मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ, उठ जाइए और चाय पी लीजिए।
0: सही कह रहे हो।
1: मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहती, मतलब क्या हो गया एकदम अचानक तुम्हारे अंदर से सारी बातें निकल के आ रही है, कहीं कौन सा शायर आपने छुपा रखा है खुशी जी अपने अंदर?
1: नहीं नहीं नहीं, कोई शायर नहीं है। जब आप इतनी खूबसूरत लाइनें बोल रहे हैं तो मेरे जहन में भी कुछ आ रहा है कि तुम्हारी यादों का मौसम कुछ ऐसा छाया है, तुम्हारी यादों का मौसम कुछ ऐसा छाया है, हर तरफ बस तुम्हारा ही साया है, जब भी बंद करती हूँ आँखें दिल ने सिर्फ तुम्हें ही पाया है।
0: क्या
1: दिल
0: बात
1: ने सिर्फ तुम्हें ही पाया
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, मतलब आपने आज ये बोल दिया ना, ऐसा कोई बोल देगा ना अपनी अपने किसी चाहने वाले के आगे तो आज ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाना। सही कह रहा हूँ?
1: हाँ बिल्कुल, आपकी बातें गलत थोड़ी ना होती, आप जो भी कहते हैं बहुत ही अच्छा बोलते हैं।
0: तो चलिए अब अपने लिसनर्स को भी हम कुछ अच्छा अच्छा सुनाते हैं इसी इश्क में।
1: हाँ बिल्कुल, सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत गीत यहाँ पर सुनवाते हैं। और दोस्तों, अब हम आपसे जाने की अनुमति भी लेना चाहेंगे क्योंकि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। आई होप आपको ये सेशन, ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हम लेकर आए हैं, आपकी यादों को हमने फिर से ताज़ा किया है, तो आप अपने फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9837896896। रेडियो बजाते रहिए
0: और गुनगुनाते रहिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, फिर मिलेंगे प्यारी बातों के साथ
0: बहुत जल्द इसी समय इसी मौसम के साथ।
1: मौसम बहुत सुहाना है तो कुछ सुहाने गाने भी हो जाएंगे आपके लिए।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
1: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
2: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।